FM 101.9 MHz पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की

तिथि और दिनांक 28 मई 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 33 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

0: समाचार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल के आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे

0: पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM एंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम।
2: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन। भर्तृहरि के नीतिक शतकम के अनुसार विद्वान होने पर भी दुष्ट मनुष्य सर्वथा परित्याग करने योग्य होता है, क्योंकि जैसे मणि धारण करने से सांप की भयंकरता कम नहीं होती, वैसे ही विद्या से अलंकृत दुर्जनों की स्वाभाविक दुष्टता का नाश भी कभी नहीं होता। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान भाग 202। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। आज श्रृंखला की 6 कड़ी आप सुन सकेंगे। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम 7 बजे से।

सुबह 7:30 से सुनेगा हम है राही प्यार के, 8:15 से सुनवाएंगे त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक महबूब खान पर। आज सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत आप सुनिएगा डॉक्टर सुनीता दुबे से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 रात्रि 11 से रंग तरंग, दिन में 12:05 से यादों की महफिल,

दोपहर 1 बजे से सुरीला सफर, दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी, 2:30 से आपको सुनवाएंगे दो सदाबहार नगमे। सखी सहेली इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे से। इसके अंतर्गत अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत के चिलमल नारियल अम्मा की कहानी, मुझे कुछ कहना के अंतर्गत गेमिंग का दलदल, उपयोगी टिप्स के अंतर्गत किचन टिप्स। संवादक हैं सोनाली पाठक और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से हेलो फरमाइश, संवादक हैं मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5:30 से सुनेगा तराने नए पुराने। झरोखा शाम 6:30 से, 6:35 शाम संध्या रंजन। जयमाला सुनवाएंगे शाम 7 बजे से।

शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए के अंतर्गत अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवाई। रात्रि 8 से हवा महल के अंतर्गत नाटक यादों की परछाइयां भाग 4, लेखन सुरेंद्र गुलाटी का, निर्देशन दीनानाथ। रात 8:15 से चित्रलोक, रात 9 से आपके लिए, और रात्रि 10 से सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर संगीता श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करनी का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें चर्चा की जा रही है कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों के बारे में। कल आपने सुना था राग धनाश्री, आज प्रस्तुत है राग दरबारी।
1: नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता में इस श्रृंखला को पेश करते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है। आज प्रस्तुत कर रही हूँ स्वाति तिरुनाल महाराजा द्वारा हिंदी में रचित एक और कृति, और आज का राग है हिंदुस्तानी पद्धति का दरबारी कानड़ा। इस बंदिश के बोल हैं, देवन के पति इंद्र, तारा के पति चंद्र, विद्या के पति गणेश, दुख भार हारी। वैसे तो राग और भाषा उत्तर भारतीय है, लेकिन रचनाकार दक्षिण के और बंदिश का विभाजन भी कर्नाटक पद्धति के अनुसार पल्लवी और अनेक चरणों के रूप में किया गया है। इस कृति को आपके सामने रखने से पहले जरा साहित्य के बारे में दो शब्द कह दूं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते समय जो कहते हैं, उसी को दोहराते हुए महाराजा स्वाति तिरुनाल कहते हैं, देवन के पति इंद्र, तारागण में सबसे उत्तम है चांद, मुनिजन में अग्रणी है व्यास ऋषि, और वाद्यों में सबसे उत्तम है वीणा, रागों में सबसे सुंदर है दरबारी कानड़ा। तो ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे सुहावना है, पक्षियों में अति सुंदर हंस पक्षी है, तो मनुष्यों में अवधवासी राम सबसे उत्तम है, पहाड़ों में हिमालय, तो तीनों लोक के पति पद्मनाभ अर्थात विष्णु हैं। महाराजा स्वाति तिरुनाल ने अपने कृतियों में पद्मनाभ इस शब्द को मुद्रा के रूप में जोड़ा है। कभी पद्मनाभ के जगह कमलनाभ, जलजनाभ भी कहते हैं, लेकिन अर्थ तो सबका एक ही हुआ, यानी कि सब विष्णु के अनेक नाम हैं। तो अब सुनिए राग दरबारी कानड़ा में।

0: राग दरबारी पर आधारित ये गीत हमने लिया था फिल्म मेरे हुजूर से, आवाज थी मन्ना डे की। स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन। उसी कड़ी में आज आप सुन रहे थे राग दरबारी कानड़ा।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज में अंदाज़ फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं नौशाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में आन फिल्म का गाना। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: सुनिए
2: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई गांवों में
2: के जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अमर फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: भोले बिस्तरे गीत कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में प्रातः 7:30 से आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। सुर संगम कार्यक्रम होगा प्रातः 8:15 से। प्रणाम अयोध्या सुनिएगा प्रातः 8:30 से। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा बीडी सावरकर जयंती। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव थापर से संजयधर द्विवेदी की बातचीत भी आप सुन सकेंगे इसी कार्यक्रम में। विषय होगा बच्चों में मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के कारण और उपचार। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत होगा प्रातः 9:00 से। और सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या सुनिएगा प्रातः 9:30 से। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे प्रातः 10:00 से। लोकरंग कार्यक्रम होगा दिन में 12:30 से। कार्यक्रम कुछ तुमने कहा फेसबुक श्रोताओं के साथ आप सुन सकेंगे दिन में 1:00 से। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:00 से। नारी जगत कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 से। कार्यक्रम में चर्चा होगी ऑनलाइन दोस्ती में दिखाएं समझदारी और स्वावलंबनी योजना पर। गीतों भरी कहानी भी आप सुनेंगे इसी कार्यक्रम में। युवाड़ी कार्यक्रम में आज शाम 5:00 सजीव फोनिंग कार्यक्रम होगा युवा संवाद जिसका विषय है आज के दौर में रेडियो का महत्व। लोक संगीत कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से। शाम सुहानी आप सुनेंगे शाम 6:10 से। गुंजे स्वरगांव के कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 से। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी आप सुन सकेंगे शाम 6:45 से। गीत गुंजन कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 से। महफिल गजल सुनिएगा रात्रि 9:15 से। और सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 से। श्रोताओं ये तो थी जानकारी हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्थक PDS योजना को जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सावधानी बरतने की दी सलाह। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में 42 से 45 डिग्री के बीच रहा तापमान। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा SIR आयोग का अधिकार। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का पर्व, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
5: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
4: सार्थक PDS योजना का उद्देश्य AI, मशीन लर्निंग, स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से PDS संचालन को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की

सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वो भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। कई जिलों में कल तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहा। बांदा में अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि कल से लू से राहत की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान।

0: कई हिस्सों में कल से अगले तीन दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया। श्री योगी ने आगरा लखनऊ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण जून माह तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनाओं की भी समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। फैसले को लेकर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसके पास SIR कराने का अधिकार है।
1: देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके पास अधिकार है SIR कराने का, उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। विपक्ष के लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, संविधान के दायरे में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका भी विरोध करते हैं।
0: नोएडा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जून महीने से शहर में ई बसें चलाने की तैयारी की है। जून के पहले हफ्ते से ट्रायल के तौर पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: 15 जून से जेयर एयरपोर्ट से फ्लाइटों के उड़ान भरने के साथ ही कुछ रूटों पर ई बसों का चलना शुरू हो जाएगा। इन बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 30 रुपए होगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक SP सिंह ने बताया कि इसी सप्ताह UP रोडवेज निगम से MOU की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले 100 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन बसों में टिकट बुक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। विशाल धरदुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: प्रदेश भर में आज बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने त्योहार को सकुशल संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। त्योहार में हुड़दंग करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। एक रिपोर्ट।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई की शाम 6 बजे तक UPSC online.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र

आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। बांदा जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्थक पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक अनाज पहुंचा

जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में 42 से 45 डिग्री के बीच रहा तापमान। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को रखा बरकरार, कहा SIR आयोग का अधिकार। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का पर्व, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसान वाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
0: कार्यक्रम में पहली भजन सुनिए लखबीर सिंह लखा की आवाज में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठा

0: स्थान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
1: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
0: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
1: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
0: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
1: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
0: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
1: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
2: मुनव्वर मासूम कव्वाल के सुर में आई सुनते हैं ये नात।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
4: RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत कलश, हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
6: रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
9: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
11: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
9: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
12: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते

0: हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वेयर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्र मंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिन सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
3: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
4: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी, भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद

0: करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
1: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद जागृति। ऐसा यार पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, ऐसा यार पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा ऐसा यार। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की

0: समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 101.9 MHz पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरसंगम।
2: बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
6: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
1: सुरसंगम कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में पहला गीत जावेद अली की आवाज में।

ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, जन जन की सेवा में शिक्षा और मनोरंजन के लिए, सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।

0: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
1: यह अगला गीत अजय अतुल के संगीत निर्देशन में आप तक पहुंच रहा है। तब भी श्री रोमानी का लिखा हुआ गाना है, आवाज है सोनू निगम की।

0: जाए।
1: इसी गीत के साथ आज का सुर संगम कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर संगम, हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
3: आपके संदेश
4: से आते हैं
3: आपके गीत,
4: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
3: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
5: अयोध्या सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज है 28 मई और आज है एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक और समाज सुधारक की जयंती। जी हां, हम बात कर रहे हैं 28 मई 1883 को नासिक महाराष्ट्र में जन्मे बीडी सावरकर की। इन्हें स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और राष्ट्रवाद के प्रति उनके समर्पण को याद करने के लिए मनाया जाता है। ये क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, साथ ही इन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व हिंदू कौन है जैसी प्रमुख पुस्तकें भी लिखी। मातृभूमि के लिए उनके त्याग के लिए आज की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता सुन लेते हैं। डॉक्टर संजीव थापर, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ अयोध्या से संजय धर द्विवेदी की ये बातचीत हम आपको सुनवा रहे हैं। विषय है बच्चों में मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के कारण और उपचार।
6: श्रोताओं, एक रोग है मायोपिया। बच्चों में मायोपिया क्या है यानी निकट दृष्टि दोष क्या है, उसका कारण क्या है और इसका बचाव क्या है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर जी को। डॉक्टर थापर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
6: सर, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे साथ में जा रहे हैं, अब बहुत मोटा मोटा चश्मा पहने हुए, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ सामान्य नहीं है, क्या समझ में आता है इसको देखते ही?
7: अब देखिए, अगर मोटा चश्मा आप देख रहे हैं और मोटा चश्मे में अगर आपको लग रहा है कि माइनस का नंबर लगा हुआ है, माइनस के नंबर से आपको दूर से पता लग जाएगा कि बच्चे की आंख थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है
6: जी।
7: माइनस के नंबर में अगर ऐसा है तो उसको मायोपिया है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष।
6: निकट
7: दृष्टि दोष का मतलब कि उसको नजदीक की चीजें ठीक दिखती हैं पर उसको दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। ये निकट दृष्टि दोष है, ये बहुत ही आजकल आम है और बहुत ज्यादा इसका प्रचलन, और आने वाले टाइम में बोलते हैं ऑलमोस्ट हमारी आधी पॉपुलेशन को बच्चों की मायोपिया से ग्रसित हो जाएगी आने वाले टाइम में। और उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो मायोपिया का सबसे बड़ा कारण है कि जन्मजात, कि मायोपिया आपके जेनेटिक होता है कि आपकी जीन्स में है। कभी आपके पुरखों में, पूर्वजों में कभी किसी को चश्मा लगा हो, जरूरी नहीं कि आपकी पहली प्रथम पीढ़ी में, कि आपके दादा दादी, आपके नाना नानी किसी में भी अगर चश्मा होता है तो वो आगे आने की संभावना उसकी बच्चों की बढ़ जाती है। दूसरा, जो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है पोस्ट कोविड, जो कोविड के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ के आई है, एक किस्म से एपिडेमिक्स आ गया है। वो रीजन उसका ये है, वो सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है। बच्चों को मोबाइल में घुसे रहने की आदत बन गई है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि इंडोर गेम्स खेलें, बाहर नहीं, मोबाइल पे गेम खेलेंगे, मोबाइल पे वीडियोस देखेंगे, मोबाइल पे रील्स देखेंगे, सारा दिन मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है निकट दृष्टि दोष के बढ़ने का। होता वो जन्म जात है, पर यह है कि अगर जिसमें जन्म जात है उसमें ये मोबाइल जो है उसको एक और एक 11 करके और आगे बढ़ा देता है। ऐसी जिनमें जन्म जात नहीं है उनमें हल्का फुल्का नंबर है, वो बार बार ये निकट का जो दृष्टि हम यूज करते हैं मोबाइल में, उसके करने से मायोपिया बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत फैलता है।
6: डॉक्टर, जो छोटा बच्चा है
7: जी,
6: तो कैसे गार्जियन ये जान पाएगा कि इसको ये परेशानी उत्पन्न हो, क्योंकि बहुत बार बच्चे बता नहीं पाते।
7: जी, पहली बात तो जिनके गार्जियंस को, जिनके पेरेंट्स को बच्चों के पहले से चश्मा लगा हुआ है उनको बहुत ध्यान देना है। उनमें बहुत ज्यादा संभावना है कि प्रथम अगर पीढ़ी में है कि आपके माँ बाप को है तो आपको वो चीज होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। पहली चीज, अगर जिनके माँ बाप को चश्मा है वो अपने बच्चों को नियमित 5 साल के बाद बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करे तो एटलीस्ट मोटा मोटा आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, जिनके घर में चश्मा नहीं है उनको कैसे पता लग सकता है? उनको ऐसे पता लग सकता है स्कूल से कंप्लेंट आती है कि बच्चा ब्लैक बोर्ड पे सही नहीं पढ़ पाता, बच्चा कॉपी या अपना वर्क उतारने में बार बार गलती करता है। तीसरा, मैडम की बहुत डांट पड़ती है, मैडम को लगता है कि बच्चा जान के कर रहा है जबकि ऐसा नहीं होता, बच्चा जो है उसको दिखाई नहीं दे रहा। चौथा, बच्चा अवॉइड करता है स्कूल जाना, उसको लगता है चिड़चिड़ापन आता है कि मैं जब जाता हूँ मुझे दिखता नहीं, मेरे धुंधलेपन के कारण मेरे सिर में दर्द होता है, बार बार छुट्टी मारने के बहाने ढूंढेगा और बार बार उसको खराब लगेगा, वो पीछे बैठने की चेष्टा नहीं करेगा, वो टीचर से रिक्वेस्ट करेगा मुझे आगे बैठाओ। तो ये बड़े मोटे मोटे लक्षण है जिससे आपको पता लग जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, बच्चा जब भी आउटडोर गेम्स खेलेगा, आउटडोर गेम्स में देखना बच्चा बार बार गिरेगा, चीजें जज नहीं कर पाएगा। फुटबॉल खेल रहा है तो उसको बार बार चोट लगेगी भागते हुए, फुटबॉल के आते हुए, क्रिकेट खेलेगा तो बॉल बार बार लगेगी क्योंकि उसको देख नहीं रहा। दूसरा, घर में आपके टीवी लगा हुआ है तो बच्चा, अगर कमरा आपका नॉर्मल बड़ा कमरा है तो बच्चा एकदम टीवी के पास जाके बैठेगा, उस तब टीवी को देखेगा। आप अगर अपने लिविंग रूम में बैठे हैं, दूर बैठे सोफे पे टीवी देख रहे हैं, आपके साथ नहीं बैठेगा, वो कोशिश करेगा स्क्रीन के पास जाए, स्क्रीन के पास खड़ा होकर देखे। तो ये छोटे छोटे लक्षण है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि बच्चे को दृष्टि दोष हो सकता है।
6: यानी अगर गार्जियन सावधान है
7: जी
6: तो इन चीजों को देख करके वो पकड़ सकता है कि उसके बच्चे की आंख में कोई समस्या।
7: जी जी जी
6: सर, ये तो हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में बात कर रहे थे, क्या छोटे बच्चों में दूरदृष्टि दोष भी आ सकता है?
7: दूरदृष्टि दोष आता है बच्चों में, दूरदृष्टि दोष बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू मायोपिया। जो दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि हाइपरमेट्रोपिया, मतलब आपकी आंख जन्म से छोटी है, जब छोटी आंख होती है तो प्लस का नंबर लगता है, वो जो दूर का दृष्टि दोष है वो कंपैरेटिवली कम परसेंटेज में होता है, कम परसेंटेज में होता है।
6: अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि छोटी आंखें होती
7: जी,
6: और जब निकट दृष्टि दोष होता है यानी आंखें
7: बड़ी हैं,
6: यानी सामान्य से बड़ी,
7: सामान्य से बड़ी आंखें हैं और सारा जो परेशानी है वो बड़ी आंख होने से ही है।
6: इसका कोई विशेष कारण?
7: इसका विशेष कारण
6: तो आपने बताया कि जेनेटिक,
7: दूसरा जो आपका नियर विजन का बहुत इस्तेमाल, जो मोबाइल और स्क्रीन टाइम है
6: जो कर रहे हैं लोग,
7: जो आप स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बहुत ज्यादा, उस स्क्रीन टाइम बोलते हैं कि अगर आप एक दिन में 20 मिनट या 25 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे से ज्यादा अगर स्क्रीन पे दे रहे हैं तो आपका मायोपिया का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। इसके लिए रोकथाम के लिए भी बोला जाता है मायोपिया के लिए एटलीस्ट मोर देन 1 आवर ऑफ आउटडोर प्ले, कि बच्चा आपका एक घंटे से ज्यादा बाहर जाके जरूर खेले, आधे घंटे से ज्यादा उसको स्क्रीन टाइम नहीं मिलना चाहिए। तो इससे हम मायोपिया का जो प्रोग्रेशन है, जो मायोपिया का बढ़ना है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी
6: डॉक्टर साहब, जब गार्जियन को ऐसा महसूस होता है कि इस तरह की कुछ समस्या बच्चे की आंख में है तो वो स्वाभाविक है कि एक चिकित्सक के पास लेके जाता है, आंखों के डॉक्टर के पास जाएगा। आप उसको कैसे जज करते हैं, क्या कुछ उसकी जांच करने के विधान है?
7: जी, हम सबसे पहले मायोपिया के लिए सबसे प्योर है कि उसका बच्चे का विजन टेस्ट करना है। हम उसकी रोशनी की जांच करते हैं, बच्चे को बैठा के, नॉर्मल अडल्ट्स भी बैठते हैं, बच्चा पैर के ऊपर से नीचे तक जितना पढ़ना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस उतना पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा, फिर उसकी रेटिनोस्कोपी करके चश्मे के नंबर निकाला जाता है। निकालने के बाद फिर हम उसको चश्मा देते हैं। अब मायोपिया में एक चीज का ध्यान रखना है, दो चीज इंपॉर्टेंट है मायोपिया में, करेक्शन और कंट्रोल।
6: करेक्शन
7: एंड कंट्रोल। करेक्शन का मतलब कि आपको जैसे माइनस का नंबर है, माइनस एक नंबर है, ठीक है, बच्चे को आज हमने 5 साल 6 साल के बच्चे को देखा, उसकी आंख में माइनस एक नंबर है। बच्चा 17-18 साल तक बच्चा बढ़ेगा, ठीक है, उसका ग्रोथ होता है, तो बच्चे का ग्रोथ होगा तो साथ में आंख का भी ग्रोथ होगा। जब आंख का ग्रोथ होगा तो आंख बड़ी होगी साइज में, आंख बड़ी प्रोपोर्शनेटली हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डिसप्रोपोर्शनेट आंख का ग्रोथ होगा तो आंख ज्यादा बड़ी होगी तो फिर मायोपिया बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा। हमारे लिए जो गाइडलाइंस होती है मायोपिया की वो रहती है कि नॉर्मली एक नंबर से ज्यादा पूरे साल में बच्चे की आंख का नहीं बढ़ना चाहिए,
6: नहीं बढ़ना चाहिए
7: जी। अगर एक नंबर से ज्यादा बढ़ रहा है तो वो पैथोलॉजिकल प्रोग्रेशन है, पैथोलॉजिकल मतलब गड़बड़ी वाला प्रोग्रेशन है। अगर आधे नंबर तक बढ़ रहा है तो फिजियोलॉजिकल है कि आपके बच्चे की हाइट अगर 1 इंच 2 इंच बढ़ रही है तो उसको नॉर्मल मानते हैं, अगर वो 8 इंच 1 फुट 1 साल में बढ़ रहा है उसको नॉर्मल मानते हैं, ऐसी आंख में भी है। तो हमारे को दो चीजों का ध्यान देना, एक तो करेक्शन कि बच्चे का जो माइनस एक नंबर है हमने उसको करेक्ट करा -1 की पावर देके, दूसरा उसके प्रोग्रेशन का कंट्रोल।

0: कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, नए चश्मे आ गए हैं जो मायोपिया के प्रोग्रेशन का कंट्रोल करते हैं, कि करेक्शन भी करते हैं कंट्रोल भी करते हैं,
1: दोनों
0: काम करते हैं। अब कंट्रोल में ये रहता है कि बच्चा जब तक आपका 16 17 साल 18 साल तक बड़ा नहीं हो जाता, उसकी आंख अगर बड़ी अबनॉर्मली नहीं होगी तो उसमें आगे चल के और बहुत सारे पर्दे की बीमारियों के खतरे कम हो जाते हैं। और ये सारे जो कंट्रोल के मैकेनिज्म है वो कारगर तभी है 15 साल के नीचे, उसके ऊपर नहीं। 15 साल तक बच्चे की अगर आंख बहुत एबनॉर्मली बढ़ गई तो फिर आपने ऑलरेडी उसको कॉम्प्लिकेशन के घेरे में डाल दिया है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आज के जमाने में।
1: यानी क्या मेडिसिन से डॉक्टर साहब उस बढ़ती हुई आंख को सामान्य गति पर लाया जा सकता है?
0: मेडिसिन से नहीं लाया जा सकता, चश्मे से लाया जा सकता है। चश्मे में नई हॉल्ट टेक्निक आई है, उससे हम उसके प्रोग्रेशन को कंट्रोल करते हैं। मायोपिया करेक्ट तो करते हैं या कंट्रोल भी करते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है, मायोपिया का समय से पकड़े जाना। समय से मैं नहीं कह रहा कि बच्चा आपका पैदा होते ही इस चीज को पकड़ सकते हैं। बच्चा आपका 4-5 साल का अगर बच्चा हो गया तो 5 साल के बाद हम इस चीज को बच्चे की ऑब्जेक्टिव नहीं तो सब्जेक्टिव कर सकते हैं, सब्जेक्टिव नहीं तो ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं कि बच्चा अगर अपने मुंह से नहीं कुछ बता पा रहा, हम दवाई डाल के रेटिनोस्कोपी से चेक कर सकते हैं कि बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर तो नहीं,
1: तब भी
0: हम बता सकते हैं। उसके बाद बच्चा जैसे समझदार होता है, बस पेरेंट्स को चाहिए कि नियमित डॉक्टर को 5 से 6 महीने पे दिखाएं। दूसरा, कि जो बच्चे मायोपिया के रिस्क पे हैं वो एटलीस्ट एनुअली दिखाएं। तीसरा, जिनका मायोपिया डायग्नोज हो गया कि जिनको नंबर है उनके लिए सावधानियां जो बताई हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ा दें, इंडोर एक्टिविटीज में स्क्रीन टाइम लेस देन 1.5 आवर कर लें, आधे घंटे
1: चाहे मोबाइल
0: टीवी देख सकते हैं। देखो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे कि सबसे खराब चीज मोबाइल है, मोबाइल के बाद खराब चीज क्या है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या आपका टैब है, उससे कम खराब चीज टीवी है, क्योंकि जितनी जितनी बड़ी स्क्रीन पे हम जाते रहेंगे आंख के लिए बेटर रहेगा। तो जिनको मजबूरी है मोबाइल की, जैसे जो भी कोविड में हुआ था, तो उनके लिए हमेशा बेटर यही रहता था कि आप बड़ी स्क्रीन पे कर लें, उसको स्क्रीन मिरर करके मोबाइल को बड़ी स्क्रीन पे आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली परेशानी कम होंगी। इस चीज का ध्यान देना है। और खान पान में हरी सब्जियां, हरी सब्जियां उसके साथ पीले फल, पीले फल में पपाया बहुत अच्छा है, गर्मी में बच्चों के लिए आम बहुत अच्छा है, सारे ब्राइट फ्रूट्स जितने हैं उसमें ऑरेंज हो गया, उसमें एप्पल हो गया, उसमें कीवी हो गया, सब आंख के लिए अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट और बादाम, ये दोनों आंख के लिए बहुत अच्छा है,
1: बहुत अच्छे
0: जी,
1: खिलाते रहते
0: हैं। बिल्कुल।
1: क्या जब आप इस तरह के बच्चों को देखते हैं, क्या उनके लिए कोई एक्सरसाइज भी बताई जाती है क्या आपकी?
0: एक्सरसाइज कुछ नहीं होती अलग से, नहीं, बस आपके लिए एक्सरसाइज एक ही है कि आपको स्क्रीन टाइम कम करना है, आपको चश्मा नियमित लगाना है और डॉक्टर के पास 6-6 महीने पे आना है, बस ये जरूरी है।
1: अपने ये दिखाते रहे डॉक्टर को
0: जी
1: के बच्चे में क्या प्रोग्रेस है
0: जी,
1: कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोग्रेस कुछ इस तरह का हो रहा है जो इनके बच्चे की आंखों को।
0: और हमेशा इस चीज की प्रेफरेंस देनी चाहिए चश्मे के मामले में कि आपको ओवर द काउंटर चश्मा नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा डॉक्टर को दिखा के ही प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका डॉक्टर ध्यान रखता है, सारा प्रोग्रेशन देखना। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने आज चश्मा चेक करा, उसको 6 महीने बाद चश्मा चेक करा, वो बोलता है लगभग मुझे उतना ही दिख रहा है। पर लगभग में अगर आप 0.25 या 0.5 का भी अंडर करेक्शन देते हैं, हमारी आंख में 1 नंबर का चश्मा है, हमें आज 1.25 नंबर के चश्मे की जरूरत है। अगर हम उसको आज भी बोलते हैं एक ही पहन लो, बोलेगा मुझे उतना ही दिख रहा है, पर अगर आप 1.25 की जगह 1 देंगे तो वो 0.25 से और बढ़ेगी। तो आपको कोशिश करनी है कि जब भी चश्मे की नंबर लेना हो, चश्मा चेक करवाना, तो हमेशा डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। ओवर द काउंटर आपको नहीं जाना चाहिए, एक बार डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन जरूर देनी लेनी चाहिए।
1: ऐसे गार्जियंस को जिनके बच्चे मायोपिया के शिकार हैं
0: जी,
1: उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे?
0: हम उनसे यही कहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी दुनिया में उपचार आ गए हैं जिससे हम चीजों को रोक सकते हैं। पहले 18 साल की आयु तक हमारे को करना है कि मायोपिया के प्रोग्रेशन को कंट्रोल करें, कि मायोपिया को करेक्ट करें, कंट्रोल करें, 2 C आते हैं, करेक्शन एंड कंट्रोल। जब ये बच्चा करेक्शन और कंट्रोल कर देंगे तो 18 साल के बाद हमारे पास चश्मा हटाने के बहुत सारे विकल्प हैं। लेसिक लेजर आपने सुना होगा, इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंस सुना है, ये सारे के सारे विधान तब हैं जब एक लिमिट तक आपने मायोपिया को रोक दिया। ये -7 -8 नंबर तक लेसिक लेजर काम करता है, अगर उससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो फिर ICL का रोल आता है, पर वो बाद की बातें हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि नौबत नहीं आनी चाहिए। मोटा मोटा इसको याद रखें कि -4 नंबर तक हम फिजियोलॉजिकल मायोपिया बोलते हैं, मतलब उसको बीमारी नहीं बोलते, अगर -4 के ऊपर नंबर है तो उसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा बच्चा पैथोलॉजिकल मायोपिया की कैटेगरी में ना आए।
1: बिल्कुल सही बात है, यानी हम अगर सतर्क रहे तो हम अपने बच्चे की परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर संजीव थापर जी, आप वरिष्ठ नेत्र सर्जन हैं, आपने बच्चों की मायोपिया, उसके कारण, उपचार और बचाव, इन सारी चीजों को बहुत विस्तृत ढंग से हमारे श्रोताओं को बताया। आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संजीव थापर, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ अयोध्या से संजय धर द्विवेदी की ये बातचीत। विषय था बच्चों में मायोपिया के कारण और उपचार।
3: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
4: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज।

0: आज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा
0: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायबरेली रोड अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
5: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
4: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
5: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
4: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
5: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
4: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashwani@gmail.com।
6: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
7: कार्यक्रम में आइए सुन लेते हैं गीत फिल्म अनुराग से लता मंगेशकर की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत ST वर्मन का।

0: रमंगनामा होय वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मन पसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: तो इस समय दिन में काफी गर्मी का अनुभव हम सभी कर रहे हैं और हीट वेव यानी हीट स्ट्रोक का खतरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम गर्मी में दिन में बाहर निकलते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लगातार इसके लिए आपको विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रसारित भी की जा रही है। जैसे हीट स्ट्रोक के अगर लक्षण की बात करें तो इसमें गर्म लाल शुष्क त्वचा का होना, पसीना आना, व्यवहार में परिवर्तन, सिर दर्द, मितली, थकान, कमजोरी होना, चक्कर आना, ये सब लक्षण आपको हो सकते हैं। अगर हीट स्ट्रोक में शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है तो आंतरिक अंगों पर विशेष रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है यानी बढ़ सकता है, मनुष्य के हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। एक या दो घंटे से अधिक समय तक अगर आप 40 से अधिक डिग्री सेल्सियस तापमान के संपर्क में रहते हैं तो मस्तिष्क में क्षति होने की प्रबल संभावना हो जाती है। क्या करें इसके लिए? आपको अधिक से अधिक पानी पिएं, हल्के रंग के वस्त्र पहने, धूपी चश्मे का इस्तेमाल करें, छाता, टोपी, चप्पल इत्यादि पहने। खुले स्थान में कार्य करते हैं तो सिर को ढककर रखें, हाथ पैर को गीले कपड़े से ढके रहें, छाते का प्रयोग करें। लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपड़े से पोंछें, नहलाएं और चिकित्सक से संपर्क करें। यात्रा करते समय पीने का पानी अपने साथ ले जाएं। घर में अगर आप हैं तो लस्सी हो गई, चावल का पानी हो गया, नींबू पानी, छाछ, इनका उपयोग करें ताकि शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। पंखे और गीले कपड़ों का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बार नहा लें जिससे शरीर का तापमान आपका नियंत्रित रहे। तो ये सब कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रख के आप हीट वेव से खुद को बचा सकते हैं और अपने साथ को भी, साथ ही लोगों को भी इससे बचाने के लिए प्रयास करें। कार्यक्रम में एक और गीत आपके लिए शेफ फिल्म से अरमान मलिक की आवाज में। रश्मि विराग का गाना है, अमाल मलिक का संगीत।

0: श्रोताओं, कुछ खबरें स्थानीय समाचार पत्रों से। बकरीद को लेकर जोन और सेक्टर में बांटी गई सुरक्षा। जिले में बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच बकरीद की नमाज पढ़ी जाएगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था जोन और सेक्टर में बांटी गई है। अयोध्या में 30 मई को रोजगार मेला। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय 30 मई को रोजगार मेले का आयोजन करेगा। ये मेला सुबह 10 बजे से राजकीय आईटीआई परिसर बेनीगंज में लगेगा। 18 से 40 वर्ष के हाई स्कूल से आईटीआई पास अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थी कुछ स्थानीय खबरें समाचार पत्रों से। इसी के साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या से अब दीजिए अनुमति।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
1: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
1: कॉल करें 6386907006।
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
2: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
1: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
2: फोन नंबर 91 61 877 347।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: कार्यक्रम में पहला गीत पन्ना मध्य प्रदेश से श्रीमती नूतम द्विवेदी, सूर्यप्रकाश द्विवेदी, प्रज्वल द्विवेदी और सात्विक द्विवेदी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पारस मणि पे। आवाजें हैं कमल बरोत और लता मंगेशकर की, गीत फारूक कैसर का और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं दादा फिल्म से यशोदास की आवाज में। कुलवंत जानी का लिखा हुआ गाना है, संगीत उषा खन्ना का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह और प्यारी गुड़िया वेदा सिंह।

0: Hello.
1: Hello. Suno. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
4: कार्यक्रम में अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं ग्राम दूल्हापुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह की। आपने पसंद किया है देवदास फिल्म का गाना, कविता सुब्रमण्यम, श्रेया और साथियों की आवाज़ में, गीत नुसरत बद्र का और संगीत है इस्माइल दरबार का।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में अगला गाना शामिल कर रहे हैं फिल्म यकीन से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। गीत समीर का लिखा हुआ है और संगीत है हिमेश रेशमिया का। पसंद करने वाले श्रोता हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं जिला नांदेड़ ये ताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल गणेश लाल जायसवाल शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल की फरमाइश है ये इन्होंने पसंद किया है फिल्म नीला आकाश का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में गीत राजा मेहदी अली खां का है और संगीत है मदन मोहन का

0: कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सच्चा झूठा से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत इंदिवर का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। पसंद करने वाले श्रोता हैं गांव चौहलदा बागपत से संजय ढीगिया और नमन ढीगिया।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: मुझसे बात
1: कर। इसी गीत के साथ है आज के आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है FM बैंड 101.9 MHz पर। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
1: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
1: कॉल करें 6386907006।
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
3: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
4: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
3: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
4: और साथ में अपना नाम, पता
3: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
4: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
5: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
6: सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या सुनने वाले सभी साथियों को सूरज सिंह का प्यार भरा नमस्कार। और आज अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो डायल करें हमारा नंबर 7376804090। हेलो
7: हेलो
6: जी, कहाँ से कॉल किया, नाम बताएं अपना। जी नाम बताएं अपना, कहाँ से कॉल किया है। हेलो जी नाम बताएं अपना, कहाँ से कॉल किया।
7: हेलो
6: जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है। हेलो
7: हाँ सर,
6: नमस्ते, कहाँ से कॉल किया आपने।
7: थाना पैकोलिया से।
6: थाना पैकोलिया,
7: हाँ।
6: नाम बताइए अपना।
7: खुशबू।
6: क्या करती खुशबू जी।
7: जी कुछ नहीं करते, बस घर पर ही रहते हैं।
6: प्रोग्राम सुनती है हमारे।
7: हेलो हाँ सुनते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है।
6: कौन से प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है आपको।
7: हमें सर हेलो फैजाबाद, दो हेलो फरमाइश, सब प्रोग्राम ही बहुत अच्छा लगता है।
6: जी तो आज कौन सा गाना सुनेंगी कार्यक्रम में।
7: मन फिल्म का।
6: मन फिल्म से
7: जी।
6: मन फिल्म से कौन सा गाना सुनेंगी।
7: जी मेरा मन तुम्हें चाहिए।
6: जी अच्छा, रेडियो के अलावा क्या पसंद है आपको। रेडियो तो सुनती ही है, इसके अलावा क्या पसंद है।
7: कुछ ऐसे कुछ नहीं है।
6: जी अच्छा ठीक है, आपको सुनवा दे रहे हैं उदित नारायण अवल का यकीनी की आवाज में ये गाना मन फिल्म से। आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
7: ओके सर, नमस्ते सर।
6: नमस्ते।

हेलो हेलो हेलो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है ये कॉल कट गई है, अगली कॉल लेते हैं।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना। नमस्ते, कहाँ से कॉल किया, अपना नाम बताएं।
1: जी स्वाति सिंह बात कर रहे हैं, अंबर से मनकापुर गोंदा से।
0: स्वाति सिंह मनकापुर से?
1: यस सर।
0: क्या करती हैं स्वाति जी?
1: घर पर रहते हैं और आईटीआई भी कर रहे हैं। पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है लेकिन घर पर हूँ इस समय।
0: अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ क्या अच्छा लगता है?
1: सर घर का काम करना अच्छा लगता है और रेडियो सुनना और गाना गाना सब अच्छा लगता है।
0: गाना भी गाती हैं आप?
1: हाँ सर, गा लेते हैं, अच्छा लगता है। मतलब जैसे ही आप पूछो तो।
0: अच्छा ठीक है, तो आज क्या सुनेंगे कार्यक्रम में?
1: सर हमको आज तो ईद वाला गाना सुनवा दीजिए, क्योंकि मुझे मूवी का नाम नहीं पता है, बट मैं गाने की बोल बता दे रही हूँ। चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया।
0: बिना गीत के, मतलब बिना फिल्म के गीत सुनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
1: तो सर दूसरा भजवा दीजिए, तो भ्रष्टाचार मूवी का भजवा दीजिए।
0: किसका?
1: मूवी का नाम है भ्रष्टाचार।
0: बृहस्पतवार?
1: भ्रष्टाचार।
0: अच्छा भ्रष्टाचार।
1: यस सर।
0: भ्रष्टाचार मूवी एक मिनट हम सर्च कर ले रहे हैं, हमारे पास है कि नहीं। भ्रष्टाचार मूवी नहीं है हमारे पास। हेलो,
1: तो सर चांदनी मूवी का सुनवा दीजिए।
0: चांदनी मूवी से कौन सा गाना?
1: मैं तो कुदाल नहीं जाऊंगी, दो रख दो कहा।
0: ठीक है, आपको ये गीत सुनवा दे रहे हैं। आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
1: थैंक यू। नमस्ते सर।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: 7376409 डायल करिए और करिए हमसे बातें, सुनिए अपनी पसंद का गाना।
9: हेलो हेलो हेलो

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: जी जी स्वागत है।
1: नमस्ते,
0: कहाँ से कॉल किया?
1: हम रायपुर से बोल रहे
0: हैं। क्या नाम बताया?
1: सलमा।
0: सलमा बोल रही हैं। कहाँ से?
1: क्या?
0: कहाँ से कॉल किया सलमा जी आपने?
1: रायपुर से।
0: रायपुर से कॉल किया है। क्या करती हैं सलमा जी?
1: हम पढ़ते हैं।
0: कौन सी क्लास में? सेकेंड में पढ़ते हैं। अरे वाह, तो गीत कौन सा सुनेंगी आज? कौन सा गाना सुनेंगी?
1: देशभक्ति गाना।
0: ठीक है, आपको सुनवा दे रहे हैं।

0: देशभक्ति गीत। तो
1: देशभक्ति गाना
0: ठीक है, आपको सुनवा दे रहे एक देशभक्ति गाना, ठीक है आकाशवाणी। आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: यस सर।

आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना।
1: ये मेरा नाम संजय है। ये
0: संजय जी, कहाँ से कॉल किया है?
1: अयोध्या जी बोल रहे हैं।
0: अयोध्या से। क्या करते हैं संजय जी?
1: थोड़ा मोटा काम करते हैं सर।
0: अच्छा, प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारे।
1: जी सर, काफी दिनों से, तकरीबन मान के चलिए 2000।
0: अरे वाह, तो बहुत पुराने श्रोता हैं आप। तो आज क्या सुनेंगे कार्यक्रम में?
1: अभी ये गाना सुनना चाहते हैं, इसका डार्क डिफायर का गाना, दिल दीवाना।
0: डार्क डिफायर से दिल दीवाना। मूवी देखी है आपने?
1: जी सर, मूवी देखी है संजय सर।
0: अच्छी मूवी है।
1: मूवी अच्छी है।
0: ठीक है, आपको इस फिल्म से गाना सुनवा दे रहे हैं, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। आकाशवाणी आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाए वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: हेलो हेलो हेलो
1: The person you are speaking.

हेलो हेलो हेलो, लग रहा है किन्हीं कारणों से हमारी श्रोताओं से बात नहीं हो पा रही है। कोशिश करते रहें, 73-76-80-40 नंबर डायल करें और करिए हमसे बातें।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, स्वागत है। नाम बताइए
1: हेलो
0: जल्दी से अपना। नमस्ते, नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया?
1: सर, हम मंगलश्री से बोल रहे हैं, आरती।
0: आरती बोल रही, कहाँ से, जगह क्या बताइए आपने? अच्छा,
1: मंगलश्री मंगलश्री सावन। सर,
0: क्या करती हैं आरती जी?
1: घर पर रहते हैं, घर का काम करते हैं।
0: तो आज क्या सुनेंगे कार्यक्रम में, जल्दी
1: सर,
0: से बताइए।
1: हमको गाना सुनना है, प्यार
0: कौन सा गाना?
1: हमारा अमर रहे। सर,
0: फिल्म का नाम बताइए। फिल्म
1: मेरा नाम याद नहीं है सर।
0: बिना फिल्म के नाम के यहाँ सर्च कर पाना बहुत ही कठिन है, ठीक है? तो दिक्कत होगी थोड़ा।
1: बेटा फिल्म का सुना दीजिए।
0: कौन सी
1: बेटा
0: फिल्म?
1: फिल्म का,
0: आवाज नहीं क्लियर हुई, कौन सी फिल्म बता रही हैं?
1: बेटा फिल्म का सुना
0: बेटा,
1: दीजिए। कोई
0: जी बेटा, फिल्म से कौन सा गाना?
1: भी सुना दीजिए।
0: ठीक है, आपको बेटा फिल्म से गाना सुनवा दे रहे हैं। आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो अयोध्या से अपने रेडियो साथी सूरज को अब दीजिए अनुमति। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें तकनीकी रूप से सहयोग दिया स्वप्निल जी ने।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पेपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओ आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है, है ना, रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
1: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है
2: जी।
1: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
1: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है
2: जी। मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
1: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
1: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है
1: जी। ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है
2: जी।
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है
2: जी।
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है
2: जी। अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज

0: का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आए और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई

0: किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
1: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
2: बहन जी, डाकिया।
1: अच्छा, खोलते हैं भैया।
3: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
4: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
3: तो कोई बड़ा है घर में?
4: हाँ, घर पर माता जी है ना।
3: जी बुलाइए।
5: माँ।
1: हाँ।
5: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
1: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
3: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
1: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
5: माँ, माँ। लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
1: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
5: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
1: हाँ।
5: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
4: अरे वाह,
1: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
4: ऐसे नहीं,
6: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
5: अरे योगेंद्र।
1: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का? तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
5: हाँ माँ।
4: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
1: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर। ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
4: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
7: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
0: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
7: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
0: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
7: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
0: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह

0: से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1,000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
0: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनके प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो, हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में तीन गोलियां लगी और वह बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत चार पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने चार और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा

0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
1: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
1: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM पर। आइए आपको लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम की ओर।
1: चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30-60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीजें जाने या ना जाने, वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है। और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में CPR दे रही है, ट्रेनिंग रही है, और इजिली मॉड्यूल्स हैं। तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
2: बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे CPR सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
1: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है

0: तो उसकी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को CPR आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर CPR सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूँगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा, जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न होते। बहुत सेलिब्रेटेड सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें, शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको जरूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवरलुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये एक तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमो सोनोग्राफी सुबह में, 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को CA था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने की, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है, और उसकी पूजा के लिए जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है. और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने, कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूंगी, अरे मैं उस जगह जाऊंगी उसके बाद करूंगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था. तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी, तब मैं बायोप्सी करूंगी, तब मैं ये करूंगी. मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं
0: था, प्रायोरिटी नहीं थी,
1: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो इन्होंने बहुत सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं. और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलोअप, उसके. तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए, और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की, वो रेगुलर चेकअप पे कर. 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है. अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है. अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए. और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल, या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए.
0: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद, या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर

0: ये बेहद खतरनाक है।
1: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था। लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने किए और जब आई तो काफी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं वो जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज उसकी यूज करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज्यादा है, मतलब एज अ जोकिंगली। बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
0: जी।
1: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाजम ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो उसके साइड इफेक्ट हुए
0: जी।
1: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
0: सेम दवा।
1: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे घर की नहीं, ये हर घर की है। क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उसे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया। और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयां फेल है। क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई है।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता। और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
1: तो मेरे डैड बचपन में काफी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे। जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे, लेकिन ये बात मुझे इम्पोर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकली

0: मैंने महसूस किया. और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है. और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है. आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, बट जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे. तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना.
0: ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट.
1: सुनते ही ये गाना

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर आल्सो।
0: अच्छा,
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड एंड

0: यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो. द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ इज वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस. एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो. सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ. एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग. सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट चॉइस ऑफ सॉन्ग है. बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली. अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी. मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं. ज्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज्यादा न्यूज भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी.
1: जी बिल्कुल. तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं. मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीजें लॉन्च करने जा रही हैं. 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
0: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है. पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ. और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल उसके बारे में, और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें. और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग. और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन. बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक एनवायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करें, न कि कियोस में यूज करें. और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है. तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है. अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं. और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर. सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं. और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी, सब में ये बातें चल रही हैं. और मैं एक जरूर बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं. वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव. इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए. तो ये बहुत बड़ा चीज है. और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें.
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए. बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच.
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से. रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान. आज के मेहमान.

0: की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: तंबाकू जानलेवा होता है, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए, शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
2: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं।
5: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
6: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
5: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
7: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
5: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
7: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
5: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

कैलाश खेर का लिखा ये गीत था जो मेरे एल्बम से। गीत और संगीत थे कैलाश खेर के और आवाज भी थी कैलाश खेर की। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूँ।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में अमर अकबर एंथनी फिल्म की ये कवाली आपने सुनी। आनंद बख्शी की लिखी ये कवाली थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बटवारा फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति का गाया, हसन कमाल के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: सितम एल्बम से ये गजल आपने सुनी चंदनदास की आवाज में, बशीर बद्र का कलाम था।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के 2रे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
5: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
4: इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। गंगटोक के सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये घोषणा की। केंद्र द्वारा उल्लास पहल के अंतर्गत ये घोषणा की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

0: गृहमंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्यूषा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिलों में दो दो मौतें हुई हैं, जबकि मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में एक एक मौत हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद को सुचारू रूप से मनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस प्रोग्राम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में आपकी कसम फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये दुगाना मेरे हमसफर फिल्म का था। आनंद बख्शी का लिखा कल्याण जी आनंद जी की तरफ थी।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
2: तुमसे अच्छा

हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर बोल रहे हैं। प्रस्तुत है अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: कार्यक्रम लोक रंग में सबसे पहले हम आपको लोकगीत सुनवाते हैं रेखा गौड़ और चंद्र प्रभा भटनागर की आवाज में।

0: कार्यक्रम का अगला लोकगीत राजेंद्र यादव और साथियों की आवाज में।
1: अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी कितनी

0: लाखों पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: सुनिए,
2: कहिए, कहिए,
0: सुनिए। भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक, आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

अभी आपने सुना अमरनाथ यादव और साथियों की आवाज में लोकगीत। कार्यक्रम का अगला लोकगीत अरविंद मौर्या और उन साथियों की आवाज में

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी बात कार्यक्रम में,
4: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
3: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
4: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
5: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
4: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
5: 830-321-99-11 पर भेज दें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर। प्रस्तुत है फेसबुक फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: सुनत है सखी सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास।
5: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
4: हाँ जहाँ ज्यादा से सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
5: और व्हाट्सएप नंबर 8303211 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
6: लोक सुरमाला आपकी पसंद।

फेसबुक फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा मैं आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त लक्ष्मी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपकी फरमाइश के पसंदीदा गीत के साथ।

जैन मंदिर, पाली गली कुरावली से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, नटगोड़ा छत्तीसगढ़ से अशोक डाले, कुमारगंज गली श्री रामपुर से सरवन कुमार प्रजापति, गांव जलालापुरा श्री सहारनपुर से अनोखे लाल मौर्य, पुराना शहर बरेली से राजेश शब्रा, साबले छत्तीसगढ़, छत्रपति संभाजी नगर से बी आई धाकड़, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विष्णु टेलर, भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से सुदर्शन शाह, पद्मा शाह निपानगर से योगेश सरवा, वन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से लालगिरी गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, दिलशाद हुसैन मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से, नारायण लाल साहू राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, शिव नारायण चौहान बाबा कुटी रायगढ़ से, इंजीनियर फैजल ईमान हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, अरुण कुमार मालवीय दर्द बड़ी गैबी चौराहा बनारस से, शेख जियाउर रहमान मानपुर साबित मुरादाबाद से, मशरूर हसन कुमार हेड़ा सहारनपुर से, आफ्ताब अंसारी गंज डिडवारा उत्तर प्रदेश से, विक्रम मालवीय गुलबा लोद आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से, सतीश अनेजा चंडीगढ़ से, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म रंग का ये प्यारा सा गीत। तो आइए सुनवाते आप सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमने ली है फिल्म राजपूत के लिए, जिसे जिसके लिए हमें फरमाइश भेजी है गजानन येली सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से, निसार सलमानी धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से, राधा नामदेव सहारनपुर से, मशरूर हसन कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से, जाकिर मंसूरी कालपी वाले बाजार रोड मुंगीसा रोड से, फागुराम यादव संबलपुर कांकेर से, राहुल मनवर शाहूनगर यवतमाल से, सुनील पाठक अनारकली बाजार जगराव से, पंजली हावकर नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, राजेश कुमार वर्मा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, प्रवीण सिरमली कवर कॉलोनी बड़वा खरगोन मध्य प्रदेश से, वेद प्रकाश मिद्धा हनुमानगढ़ राजस्थान से, सुरेश गंगनेजा जलालाबाद वेस्ट से, ओम प्रकाश राय कोट नारायण बाबा पट्टी बलिया से, उत्तरा दिवाकर पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से, नरेश मल्होत्रा निट्टू खेल बाजार पानीपत से, विजेंद्र विश्वकर्मा पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, प्रमोद कुमार साहू बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से, जगमोहन सिंह प्रजापत लोहोडडा जिला बागपत से, रविंद्र सिंह छाबड़ा नई दिल्ली टैगोर गार्डन से, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म राजपूत का ये सुंदर सा प्यारा गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म पत्थर के शर्म से, जिसके लिए हमें फरमाइश भेजी है नीलू मेघ राजधानी रायपुर से, दिवाकर खान रघुवीर नगर से, उमा सिंह उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, कमल सहनी नागपुर महाराष्ट्र से, संजय ढींगिया कस्बा उघैती से, शहरून नूर अंसारी ग्रामवा पोस्ट हरहरपुर मटकली बरेली से, विजय सुरलकर मौताला महाराष्ट्र से, राजेश वर्मा लालकुर्ती रुड़की कैंट से, शुभचंदर बजाज इन्होंने अपना पता नहीं लिखा है, कुंवर कृपाल सिंह परिहार गुलबालोद तहसील आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से, बालकृष्ण नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से, दिग्दर्शन गौड़ मेरठ से, मोहम्मद सईद अब्बासी ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर भाटा से, सुभाष गुदारा हीरावली फाजिलका पंजाब से, आर सी कांबड़े जवाहरनगर दुर्ग से, दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से, ओम बगरिया गांव बांडी वाला फाजिलका से, जी के परमार गांधीनगर गुजरात से, सोम दत्त नाभा जिला पटियाला पंजाब से, रमेश कुमार पटेल नराट मलोट से, इन सभी ने सुनना चाहा फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है किशन सपकाल शास्त्री नगर बीट शहर से, बबलेश पवार गांधी चौक बाड़मेर से, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाला, शंभुदयाल गांव जखूत से संदीप कुमार गुराया चौक जालंधर से, झग्गर राम साहू नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से, राम कुमार रिवाड़ शादुल शहर रिवाड़ से,

रिजवान खान अंबा चौकी छत्तीसगढ़ से, राजू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से, धर्मेंद्र शिपा भोपालगढ़ राजस्थान से, नंद कुमार ठाकुर गांव चरौदा बार नवापार जिला छत्तीसगढ़ से, श्री कृष्ण बाठेर धांडी नांदोड़ा महाराष्ट्र से, महेंद्र मोदी रामगढ़ कैंट से, मोहम्मद फारूक शेख गणेशपुर गंज डुडवारा इटा उत्तर प्रदेश से, हुकुम कर्माकर बरड़ी मध्य प्रदेश से, जगदीश थाकड़ आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म हीना का ये गीत।

मोहम्मद फारूक शेख गणेशपुर गंज डुडवारा इटा उत्तर प्रदेश से, हुकुम कर्माकर बरड़ी मध्य प्रदेश से, जगदीश थाकड़ आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म हीना का ये गीत।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
2: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
3: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
2: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
3: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
2: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
3: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
2: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमने ली है रविंद्र दास किशनगंज बिहार से। जीवन विश्वकर्मा गाड़ीधामा चाईबासा झारखंड से, रमेश चौहान जोधपुर राजस्थान से, मुकेश गोस्वामी उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, अनिल जैन मलिया

मकान सरधना मेरठ से राजकुमार डूडी गांव फरासी जिला हेमंत से मोहम्मद फरमान मुरादाबाद दुल्लापुर से बब्बन मल्होत्रा मोहाली पंजाब से प्रवीण सोनी गांधीग्राम गुजरात से राष्ट्रपाल गजभिये डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से ज्ञान भूषण शर्मा इन्होंने अपना पता नहीं लिखा है देवेंद्र कुमार गुप्ता उघेती कस्बा से रामसूल कमराही गंज डुडवाड़ा से मोहम्मद कलीम अंसारी इन्होंने भी अपना पता नहीं लिखा है बिल्लू सिंह चिंडालिया लोहारू हरियाणा से इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म शक्ति का ये गीत

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है सदानंद मंदूर का, डाबकी रोड अकोला से सदानंद जी। गोविंद वैष्णव ग्राम लसूड़िया पाता नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से। विनोद लखनपाल रावर करनाल से। प्रेम सिंह वरवल हनुमानगढ़ राजस्थान से। राजपाल आदर्श नगर मलोट पंजाब से। मोहम्मद रफीक पमार ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से। अनिल वर्मा सदर बाजार कुरावली से। फहीम मंसूरी बांदा उत्तर प्रदेश से। सदाशिव थोरात गांव देवांग पूर्णा महाराष्ट्र से। मोहन जोशी भाटपाड़ा छत्तीसगढ़ से। देवेश वर्मा ग्राम पीपरलोड सरगामा छत्तीसगढ़ से। गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से। और मोहम्मद यासीन नई बस्ती गंज डुडवाड़ा से। इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म बेताब का ये गीत।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमने ली है ताज अंसारी आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, जयपाल यादव इंद्रपाल यादव ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड से, राजू माठे तहसील जलगांव जामोद खामागांव महाराष्ट्र से, ग्राम उमराटाली खाओगांव से, बीके हितेंद्र असम से, अशोक सिंह धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से, गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी नैनीताल से, अंकुश अरोड़ा खुर्जा उत्तर प्रदेश से, अनिल मोहन पहाड़गंज मुल्तनी ठाणा से, दातार सिंह गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, रणधीर गुप्ता ओखला संगम बिहार दिल्ली से, उत्तम सिंह जंघेल आर्यनगर कोहमा भिलाई से, तेलंगाना निजामाबाद से, एस के अलबख्श हरजिंदर छिंदा गांव नथाना पंजाब से, बी कमल मजनू कटीला सतना मध्य प्रदेश से, नरेन नेताम बगबुडवा

हरिया छत्तीसगढ़ से, माधव रामदेव नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, सुखविंदर सिंह जौड़ा कृष्णा पार्क दिल्ली से, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सिलसिला का ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।
5: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
6: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे आ थारे जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना

0: एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
3: कार्यक्रम का अगला गीत रूप कुमार राठौर की आवाज में।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94-532-21-909।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 90-44-20-70-70।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए

0: बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
2: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के

0: व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्योहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारसिनहायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति

लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के

शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: सभी श्रोता सखियों को संध्या सक्सेना का नमस्कार। बहनों, कितना अच्छा लगता है जब कोई सखी, बहन या परिवार का सदस्य जो बहुत दूर हो उससे बातचीत हो जाती है। एक सुखद एहसास की अनुभूति होती है। दूर रहने वाले लोगों से संपर्क बनाने में पढ़ाई, करियर या शौक से जुड़े अच्छे दोस्तों से, परिचितों से या फिर कभी कभी नए लोगों और उनके विचारों से जुड़ने में सच्चे और लंबे रिश्ते बन जाते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से ये सब आसान हो गया है। तकनीक और मशीनें हर चीज को कितना सरल, सुगम और सुलभ करती जा रही है, लेकिन यहाँ ये भी सोचने की आवश्यकता है कि आसानी से हमारे साथ ठगी धोखाधड़ी भी हो सकती है। इसलिए नए लोगों से संपर्क और दोस्ती करते समय सतर्कता भी जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिए अपनी निजी जानकारी देते समय किसी दबाव, डर या लालच में ना ही पड़े तो बेहतर होगा। अपनी एक सीमा रेखा तय कीजिए। पैसों के लेन देन में या भावनात्मक बातों में आने से पहले पड़ताल जरूर करें। अच्छा तो ये है कि अनजाने लोगों से इस स्तर तक पहुंचे ही ना। अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर करने में और खुद को आत्मनिर्भर बनने में खर्च करें। ऑनलाइन के माध्यम से आप अपने कौशल को बढ़ाकर अपने क्षेत्र में कुशल हो सकती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की महिला उद्यमिता योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने, स्वयं पर निर्भर बनने में मदद करती है, जिसे स्वावलंबनी योजना के

नाम से जाना जाता है बहनों। इस योजना से छात्राओं में उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारी युवा शक्ति नौकरी उत्पन्न करने वाली बन सकती है। इसके द्वारा व्यवसाय के अवसर, उद्योग के लाभ के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो जो बहनें इस ओर अपना रुझान रखती हैं, वो अपने विचारों, कल्पनाओं को उड़ान की गति दे सकती हैं। आप जितना सक्षम और कुशल योग्यता में वृद्धि विस्तार लाएंगी बहनों, उतना ही आपकी बौद्धिक क्षमता, मानसिक पूंजी बढ़ती जाएगी। बस इसके लिए आपको अपनाना होगा सकारात्मक विचारधारा, स्वस्थ जीवन शैली और अच्छी आदतें। हम तो ये कहेंगे कि इसके लिए बच्चों में बचपन से ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ताकि वो शुरू से ही एक ऐसी दिनचर्या में ढले हों जिसका उन्हें पता हो कि सुबह से शाम तक उन्हें किस समय क्या क्या करना है। तो चलिए बहनों, उस पड़ाव पर आ गए हैं जहाँ से शुरुआत होती है गीतों भरी कहानी की। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो हमारी स्वस्थ जीवन शैली को रेखांकित करती है, जिसका शीर्षक है प्रेरणा। शिखा श्रीवास्तव मैडम अपनी कक्षा में छात्राओं को पाठ समझाने के बाद श्याम पट पर प्रश्नोत्तर लिख रही थी। ब्लैक बोर्ड के निचले भाग में अंतिम प्रश्न का उत्तर झुककर लिख रही थी, तभी ईशानी पीछे की सीट से उठकर आई और बोली, मैम आप जो लिख रही हैं वो मुझे अपनी सीट से स्पष्ट नहीं हो रहा है। मैडम ने लिखना बंद किया और ईशानी की तरफ पलटकर बोली, क्यों बेटा, मैं तो समान अक्षर से सारे वाक्य लिख रही हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, तुम्हारे बगल जो बैठी है नेहा, सीमा, पूजा, तृप्ति, मानसी, तुम लोग बताओ क्या तुम्हें भी लिखे हुए अक्षर स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। सबने अपनी कॉपी ऊपर उठाकर दिखाई। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है, हम सबने क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख कर काम पूरा कर लिया है। शिखा मैडम को समझने में देर नहीं लगी कि ईशानी की आंखों में दिक्कत हो रही है। उन्होंने उसे कक्षा की प्रथम पंक्ति में बिठाया और पूछा, क्या अब तुम्हें दिख रहा है। वो बोली, हाँ मैम, अब मैं लिख सकती हूँ श्याम पट से। मैडम फिर बोली, अच्छा जब छुट्टी में पिताजी आए तुम्हें लेने के लिए तो हमसे मिलवा देना। ईशानी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपने काम में जुट गई। शिखा मैम जान रही थीं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों के माता पिता बहुत जागरूक नहीं रहते, ना ही सही पोषक तत्वों की जानकारी रखते हैं। उन्हें पेट भरने तक ही सीमित रहना होता है। तभी बेल बजने लगी और वो दूसरी कक्षा में चली गई। छुट्टी होने पर ईशानी अपने पिता को मैम से मिलाने के लिए ले आई। नमस्ते मैडम, आपने बुलाया। हाँ, हमें आपसे ये कहना है कि ईशानी की आंखों का चेकअप एक बार करा लीजिए, क्योंकि सारे बच्चों को उतनी दूरी से श्याम पट दिखता है, लेकिन ईशानी को समस्या होती है। मुझे लगता है कि उसकी आंखों की रोशनी में कुछ दिक्कत हो रही है। समय रहते इलाज हो जाएगा तो आगे चलकर दवा और सही खान पान से उसकी समस्या दूर हो जाएगी। इतना सुनते ही उसके पिता ने कहा, अरे मैडम जी, हम दुई पैसा कमाई, इनके सबके पेट भरी कि चली डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाई, कुछ नहीं भवा है, पढ़े कर ना पढ़े यही मारे सारा बहाना करत होए। कहकर ईशानी का हाथ पकड़कर वो चल दिया। निरुत्तर सी खड़ी रह गई शिखा मैडम। गेट से बाहर निकलते बच्चे दूसरे दिन के संडे की छुट्टी की खुशियां मनाते हुए आगे बढ़ गए।

सोमवार के दिन प्रार्थना सभा में ही मैडम ने बच्चों को रोक लिया और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में सभी छात्राओं को समझाया कि बच्चों ये जो तुम्हारी नाजुक उम्र है इसी समय तुम्हारे तन मन का समुचित विकास हो रहा है, इसलिए इस दौर में तुम सभी को संतुलित भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व हों उसे खाना चाहिए। अगर पोषक आहार ना मिले तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बालों, वजन और लंबाई पर बुरा असर पड़ता है, उनका विकास रुक जाता है। कुपोषण से तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कुपोषित होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है जो तुम्हारे सीखने की क्षमता पर प्रभाव डालती है, इसलिए कल एक डॉक्टर आएंगी, उनका शिविर लगेगा और सारे बच्चे अपना चेकअप कराएंगे। सभी ने हामी भरी और कक्षा में पहुंच गए। तृप्ति ने अपना बस्ता खोला और बैग से एक पैकेट निकाला और उसमें से सेव जैसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा चटपटा मसाले वाला नमकीन खाने लगी। तभी पूजा ने कहा, तृप्ति अभी मैम ने हमारे खान पान के बारे में कितना कुछ समझाया लेकिन तुम आते ही सब भूल गई। कुछ नहीं होता, हम तो पैकेट की ही चीजें खाते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, और हंसकर गाना गाने लगी।

जो बच्चे जिद्दी और अड़ियल होते हैं उन्हें समझाना इतना आसान कहाँ होता है। दूसरे दिन फिर बच्चे स्कूल पहुंचे। शिखा मैम की बचपन की सहेली डॉक्टर सुमित्रा अपनी टीम के साथ पहुंच गई। सारे बच्चों का बारी बारी चेकअप हुआ, जिसमें कुछ बच्चों में कई कमियां पाई गईं। किसी के दांतों में कैविटी थी, किसी में स्वच्छता की कमी, कोई छात्रा उम्र के अनुसार वजन में बहुत कम थी, कोई कुपोषण की शिकार थी, कुछ में खून की कमी पाई गई। 250 बच्चों में केवल 100 छात्राएं ही बिल्कुल स्वस्थ थीं, बाकी के लिए शिखा मैडम बहुत चिंतित थीं। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, ऐसे में हम लोग इन बच्चियों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे इनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए, और इसके लिए ना सिर्फ बच्चों को बल्कि इनके माता पिता की भी बैठक बुलाई जानी चाहिए। अभिभावकों को नोटिस भेजी गई, निश्चित दिन समय पर सभी आ पहुंचे। बैठक की शुरुआत डॉक्टर साहिबा ने की और कहा, तेजी से बदलते परिवेश में अच्छी सेहत बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण मामला हो सकता है। बच्चे हों या बड़े, स्वस्थ और निरोग होना सभी के लिए जरूरी है, लेकिन बड़ों की तुलना में बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए उनके खान पान पर ध्यान ना दिया जाए तो वो रोगों की चपेट में जल्दी से आ जाते हैं और बार बार अस्वस्थ होने से उनका शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध होता है या विकास की गति धीमी हो जाती है। इसके लिए उनकी शारीरिक गतिविधियां, अच्छी आदतें, सही आहार विहार, विचार, आचार बेहद जरूरी है, क्योंकि यही बच्चे आप सभी माता पिता के सपनों को साकार करेंगे, आपको समाज को ऊंचाई पर ले जाएंगे, अपने को बेहतर करके सफल होंगे और देश का भविष्य सुरक्षित करेंगे। इसलिए कल को आज संवारना बहुत जरूरी है। इसलिए इनकी दिनचर्या में ऐसा खान पान शामिल कीजिए आप लोग, जैसे चॉकलेट या टॉफ़ी के बजाय गुड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट या टॉफ़ी आपको देनी ही नहीं है, लेकिन गुड़ पर ज़्यादा फोकस करिए। पैकेट में मिलने वाले नमकीन से बेहतर है भुने लाई चना, मूँगफली, सोयाबीन के दाने, ये बढ़ती बेटियों के लिए अच्छे होते हैं। मिलेट्स यानी मोटे अनाज को अपनी थाली में फिर से ले आइए। इन्हें खाने के बाद पचाने के लिए अधिक पानी पीने की आवश्यकता होती है, जो हमारे सेहत को लाभ पहुंचाते हैं। इतना सुनते ही नटखट, चुलबुली, शैतानी में अव्वल तृप्ति, सीमा, सोनिया, सानिया एक दूसरे को देखने लगी और ये गीत गुनगुनाने लगी।

डॉक्टर सुमित्रा और मैडम शिखा ने बच्चों के दवा और खानपान का जिम्मा लिया। सभी छात्राओं व उनके माता पिता को समझ में आ गया कि स्वभाव से चंचल बच्चे होते हैं, इन्हें सिखाने बताने में थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। उनकी बातें सबको समझ में आई, जीवन शैली सुधारने की सभी ने प्रेरणा ली। दिन हफ्ते महीने बीते, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा। किताबों के बीच, खेल के मैदानों में, अन्य गतिविधियों में बच्चों में होड़ होने लगी, कड़ी प्रतिस्पर्धा होने लगी, क्योंकि उनके माता पिता का भरपूर सहयोग मिल रहा था। सभी छात्राओं में एक दूसरे से आगे निकलने की चाह पूरे स्कूल के माहौल को सकारात्मक और स्वस्थ रूप से बदलने लगी। तभी कुछ ही दिनों में वार्षिकोत्सव का भी समय आ गया और बच्चों ने जो प्रस्तुति दी कि लोग झूम उठे।

अब समय परीक्षा का आ गया था और वो भी दिन आया जब परिणाम घोषित हुआ। फिर सभी दोस्तों के चेहरे पर चमक और खिलखिलाहट थी क्योंकि सभी ने अच्छे अंकों से परीक्षा पास की थी। सोनिया और गीता ने अपनी सभी सखियों से कहा कि हमारी मेहनत तो है ही, लेकिन इसके पीछे जो प्रेरणा थी वो हमारी शिखा मैम की है, इसलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। सब पहुंच गईं अपनी चहेती मैडम के पास। शिखा मैम बोली, देखो बच्चों, अच्छी आदतों से ही अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इसलिए हमेशा मुस्कान की चमक यूं ही बनाए रखना और अपने आसपास हंसी खुशी का माहौल बनाना, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, थोड़ी सी सहनशीलता की जरूरत होती है, क्योंकि तुम सभी एक दीपक के समान हो। मेरे बच्चों, तुम जहां भी रहो सफलता तुम्हारे कदम चूमे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करो। मैडम की बातें सुनकर सभी छात्राएं अपने आगे की मंजिल के सपने देखने लगी।

बहनों ये थी कहानी प्रेरणा और अब चलते हैं रसोई की ओर। कुछ नाश्ता बनाते हैं बच्चों के लिए। नमकीन कॉर्न, 2 कटोरी भुट्टे का दाना लीजिए, उसे कुकर में आधा कप पानी डालकर 2 सीटी आने तक पकाइए। ठंडा होने पर कुकर का ढक्कन हटाइए, दानों को पानी से अलग करिए। अब गैस ऑन करके पैन या कढ़ाई रख दीजिए। कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच देसी घी या जो तेल आप खाती हों डालिए। 2 कली लहसुन, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्च, चुटकी भर हींग डालकर चलाइए और दानों को डाल दीजिए। पानी सूखने तक पका लीजिए और नमक, काली मिर्च का पाउडर डालकर अपने स्वाद के अनुसार सर्व करिए। हल्का सा नींबू का रस डाल दीजिए। खट्टापन चटपटा स्वाद देता है। बढ़िया सा पौष्टिक नाश्ता तैयार है मोटे अनाज का। और बहनों अब समय बिल्कुल नहीं है, तो दीजिए संध्या सक्सेना को इजाजत। नमस्कार।

0: पुलिस?
1: वरना घर आ जाएंगे आ?
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
6: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
5: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
6: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं, बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
5: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, ये आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
6: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी जगत, ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM पर। आइए आपको लिए चलते हैं केंद्र की विविध भारती सेवा की ओर।

0: ಹೇಳಿ. सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार. आरती आपको भी मेरा नमस्कार.
1: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार.
0: और आरती कैसी हैं आप?
1: बस ठीक है, गर्मी में जितना ठीक हो सकते है उतना ही ठीक है क्योंकि जो धूप के हाल है गर्मी के हाल है ना, बस पूछिए मत.
0: नहीं पर हम अगर गर्मी की बातें करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है.
1: हाँ ये बात भी है,
0: इसलिए हमें ना गर्मी की बातें नहीं करना है, बस
1: सोचना ही नहीं है कि गर्मी. अरे बिल्कुल गर्मी नहीं है
0: तभी तो हम खुश रह सकते हैं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए हमें बस वजह ढूंढना चाहिए, है ना. क्योंकि खुशियों की वजह अगर हम ढूंढते हैं तो सचमुच जिंदगी हमारी बहुत खुश हो जाती है.
1: बिल्कुल. और मैं तो कहती हूँ वजह भी ढूंढने की क्या जरूरत है, बस हंसिए मुस्कुराइए खुशियां मनाइए.
0: बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनिए, विविध भारती सुनते रहिए, है ना. और आज के विषय बता दें.
1: आज के विषय है

0: बात करेंगे आज अपने बच्चों की जो झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं उनके ऊपर। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बॉस सभी लोग अक्सर करते हैं, क्योंकि अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं तो वो आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप तो नहीं है या आप हैं तो आप भी कितनी मतलब इस चीज को करते हैं कि झूठी प्रशंसा करते हैं, कितना करते हैं, तो इसी बारे में आप बताइए। या कोई आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो, किसी पड़ोसी ने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दिया हो। और आज हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंदर इसके बारे में,
1: के चल्लमल नारियल अम्मा उनकी बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही आसपास के लोग इस दलदल में क्या फंसे हुए हैं या आप इससे दूर है, इस विषय पर हमें लिखिए कमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ श्रोताओं का सेगमेंट है ना।
0: और एक बात मैं आपको बता दूं सोनाली, इस दलदल में थोड़े से पहले मैं खुद भी
1: फंस गई थी
0: बिल्कुल। और मुझे ऐसा हो गया था ना कि मैं बस खेलती चली जा रही हूँ और एक लेवल दो लेवल मैंने कहा कि बस किसी तरह से अगले लेवल पहुंच जाऊं। फिर मैंने कहा ये मुझे हो क्या रहा है, मैं पूरे टाइम सिर्फ इसी को कर रही हूँ। तो ये चीज से आप बाहर निकले, तो इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से बाद में। और भी तो विषय है।
1: और आज एक खास दिन है आरती, ईद उल अजहा, बकरीद भी है आज, तो उस बारे में भी हम बहुत सारे सखियों को श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ ही उपयोगी टिप्स, ये बहुत जरूरी टिप्स है आज की,
0: ताकि हमारा नेट जो है वो एकदम जलता रहे और हम अपना आराम से विविध भारती बिना उसके रोक टोक के सुन सके आराम से। और साथ ही और भी अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है वाईफाई, क्योंकि डेटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो वाईफाई होता है ना वो बहुत आराम से चलता है, पूरी फैमिली भी उससे कर सकती है, लाभ उठा सकती है। तो उसकी स्पीड अगर धीमी है तो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
1: और आप क्या करें,
0: एक गीत सुनते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो भाई सच में बहुत महके हुए से आज कभी देखो ना किसी को कि कोई अपनी फ्रेंड है तो बहुत मुस्कुरा से रही, तो हमें पता चल जाता है कुछ तो राज इसने छुपा के रखा है। जैसे अभी मुझे लग रहा है सोनाली को देख के कि कुछ राज तो है, कि यानी वो पढ़ने वाली है, कोई कमेंट या कुछ बताने वाली है।
1: जी नहीं, आज हम सबसे पहले तो हमारे सभी सखियों को, श्रोताओं को बकरीद या ईद उल अजहा की हम
0: मुबारकबाद देते हैं।
1: जी, और ये जो इस्लाम का दूसरा सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम की अटूट आस्था, त्याग और समर्पण की याद में मनाया जाता है। ये त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये रमजान के खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद आता है। ये चांद के देखने पर निर्भर करता है, इसलिए देश और स्थान के अनुसार इसकी तारीख में थोड़ा अंतर हो सकता है।
0: जी बिल्कुल, और बकरीद के दिन सुबह ईदगाह या मस्जिदों में विशेष ईद की नमाज भी अदा की जाती है, और नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बिरयानी और अन्य लजीज पकवान बनाए जाते हैं, और गरीबों और जरूरतमंदों को दान या जकात देना इस त्योहार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है।
1: तो सारे हम सखियों को, श्रोताओं को ईद की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं।
0: जी।

0: हाँ तो सुनाली कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये,
1: जब है ना जब कोई भी त्योहार हो तो अलग ही एक ना आनंद की अनुभूति होती है ना, फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है। वैसे कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश रहते हैं हमें ना उनके काम,
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके जैसे हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए, हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं।
1: जी
0: आज हम बात करेंगे
1: के चेलम्मल जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है। और चेलम्मल दक्षिण अंडमान के रंगा चांग की रहने वाली है, और चेलम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, यानी जैविक तरह की उन्होंने खेती की।
0: बिल्कुल, और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती है। इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती है, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे।
1: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया, उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है।
0: बिल्कुल, और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं। वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं। उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है।
1: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं, जहां वे नारियल के पेड़ उगाती है। उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों की फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की।
0: कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। और श्रीमती चेलम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए। वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए।
1: और चेलम्मल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है। अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चेलम्मल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है।
0: बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए, तो वो परागण के लिए बहुत सारी फसलों का परागण करती है मधुमक्खी,
1: देखिए
0: तो उसके लिए भी उन्होंने कितना किया, तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षा की तरीके से एक तरह की। और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है। उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है।
1: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं, और श्रीमती चेलम्मल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है।
0: बिल्कुल, और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है।
1: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार, और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है।

0: कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
1: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती है तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित।
0: पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है।
1: बिल्कुल,
0: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, तो वो कला को अपने निखारना चाहिए।
1: और अब एक संदेश सुन ले।
0: बिल्कुल।
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली उसका जन्मदिन है तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
0: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखिया वे भी आएंगे, पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है.
1: बिल्कुल, वो तो पता चल जाता है चेहरे को देख के.
0: कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75%
1: है. ये तो होता है, ये तो होता है.
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा. पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है. और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो. और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है.
1: उन्हें उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं. जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ.
0: जी, एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बड़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है. इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है, और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है. बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं. जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं. जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने मेहनत करने की ललक कम हो जाती है. उनके प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है. कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की. प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं, इससे बच्चों में लगन बढ़ती है. और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा, पर बहुत तेज हो करता कुछ नहीं है. तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है, उन्हें सिखाए. और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए.
1: बिल्कुल, और लेकिन उस चीज को लेकर इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम हो जाती है. इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए. हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े. तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए.
0: क्या बात है,
1: एक हमारे आगे कर सके.
0: जी, एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं. ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है. जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता. अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखें. सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं. इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए.
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से. तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है, और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है. सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए. उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए. झूठी प्रशंसा के जो जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक

0: श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है और वो विफलता से डरने भी लगते हैं और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूँ, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है। मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला अफजाई जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरह

0: लिखते हैं, लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरीके की चीजें वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की वजह अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
1: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपनी जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और जिंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते, ये भी सही बात कही है। और आरती अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी
0: जी।
1: वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है, है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है।
0: और अब क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये बहुत सही बात लिखी है।
1: और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए न कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
0: एक साथ लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें न कि उनके परिणामों पर। इन्हें मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैया जरूर रवैये की जरूरत होती है जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो। जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल,
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करे, जैसे है बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताए कि भाई हाँ इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक को देखिए तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाए और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए ऐसा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है, उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है। तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है, तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी ना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मिया होती है, पापा होते हैं, घर के लोग ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं। ये आज का युग जो है ना तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे मोबाइल कंप्यूटर वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय माध्यम है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है, पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते

0: वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं, और साथ ही बहुत बड़े अपने जो जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गंवा देते हैं।
1: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्जाम दिए और उनकी छुट्टियां चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फोन चाहिए। सच कहूं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फोन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से एक मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत जरूरी होता है, वरना धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: बिल्कुल। और श्रोता जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहां गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी के जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदी हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। ये दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन लगता है लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से खत्म कर लेते हैं और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा है।
0: बिल्कुल। और एक और जोश होता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो बाहर जब गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पे पूरे समय देखते रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पे भी बुरा असर पड़ता है।
1: और ये जो गेमिंग जो है जो होते हैं ना इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं, पानी में गिर जाए तो भी उन्हें कुछ पॉइंट्स अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो ये बच्चे और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं तो उसके साथ उनकी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है। एक हमारे साथी ने लिखा है दीपा, सॉरी
0: जी कोई नहीं,
1: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाए या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करें या किताबें पढ़ें।
0: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता जो लिखते हैं कि आज के जो जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करने लगता है तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए गेम्स खेलना बुरा नहीं है लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है, पढ़ाई, खेलकूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
1: और अब क्या करें,
0: एक गीत सुने,
1: सुनते हैं गीत।

आज समझे।

0: के समझे।
1: हाँ समझे।

0: तो आरती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं।
1: बहुत से ऐसे गेम आ गए खतरनाक
0: जी।
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO

0: या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
1: सही बात है। फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं नहीं नहीं, पर अगर हमें बहुत ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है तो बात समझ सकते हैं, पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना वो सिर्फ सीमित मात्रा
1: तक, वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए, बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए।
0: जी, और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए?
1: की रफ्तार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई बहुत, कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं क्योंकि हमने उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर है तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है, तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है।
0: जी,
1: तो कभी कभी होता है ना कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: जो मोबाइल टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं जिससे स्पीड,
1: कोई आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है थोड़ी दूर तक है तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकते, तो वही खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपकी वाईफाई की जो स्पीड है वो धीरे

0: थोड़ी धीमी हो जाएगी। साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना तो फिर उसकी आपके फोन के स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे एप्स खुले हुए हैं, अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का करेंगे एक ही टाइम, तो सारे अगर एप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है।
1: तो आप उसका भी ध्यान रखें, और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, उसी जगह पर लगाएं, जैसे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको।
0: और राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें, यदि दो एंटीना है तो एक को वर्टिकल इन्हें खड़ा रखें और दूसरा एंटीना को हॉरिजॉन्टल इन्हें आड़ा रखें, यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही एक है ना फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सके, वाईफाई और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: अब एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ करता है और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें, या जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लिख के भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीजें जो है जो हमने अभी बताई वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उनका कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लगी थी लेकिन अब छोड़ गई है। क्या बात है। तो बधाई हो।
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।

0: आपने उस चीज को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज करी है आपने। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही एकाग्रता में कमी भी आती है। लंबे समय तक स्क्रीन पर वर्चुअल गेम खेलने से वास्तविक दुनिया से या पढ़ाई पर या काम पर ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है।
1: ये तो है ना, टेक्नोलॉजी के फायदे भी है और नुकसान भी है, तो हमें उसके फायदे लेना चाहिए और नुकसान को हमें बाय बाय कहना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल, उसका ध्यान रखिए, इतना मत किसी चीज में लग जाइए कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे। और अति हर चीज के लिए
1: बिल्कुल अति सर्वर्थ वर्जे, तो भाई अति से दूर रहे कि बस वो इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, हम इतने इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए,
0: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
1: तो सुनते हैं गीत।

0: तो इतनी आज की मुलाकात,
1: आज की मुलाकात
0: बस इतनी। और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक।

0: फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना। तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: जी? हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, सब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कम्बाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब भी हम जो क्लास वर्क होता था शाम की करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगे हुए, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी, वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था, पूरा कार्यक्रम जितना चलता है भारती शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आप बता सकते हैं।
0: तो हमारी पक्की लिस्नर हैं आप।
1: यही जान लीजिए हम इस समय 36 साल के, मान लीजिए हम 6-7 जब से हम बहुत संभाल हैं, सब से सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे आप क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं?
1: पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने डेली बेस मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, फिर हमें गर्मी टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले जाते हैं, फिर 3-6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बचता रहता है, सुनते रहते हैं। अभी दोपहर में हम लगाने लगे।
0: काम कहाँ करते हैं?
1: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
0: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: जी हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जो जीवन में एक पल भी रोना ना।
0: आइए सुनते हैं आपकी।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो ममता किनी जी,
0: नमस्कार।
1: मैडम खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये मैडम खांजीपीर उदयपुर से, झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए, अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम, गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीलें हैं काफी, क्या कह रहे हैं, धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है, और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्पत बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास, और एक अंबावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है
0: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट

0: जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं, तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम, त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। करते हैं क्या
0: जी?
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे वाह,
1: तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है,
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।
0: हाँ,
1: अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है, तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उस समय क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम।

0: बिल्कुल दीदी बिल्कुल, बहुत अच्छा
1: जी। बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है,
0: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में
1: जी। तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
0: देखो
1: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
0: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापिस रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें, सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर क्या है। ये तो दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर इधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बस वही बात है,
1: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और सब चीजों का।
0: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायांकित प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापिस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं 2 बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता तो फिर वापिस यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
1: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायांकित।
0: छायांकित में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं तो वो क्या है कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
0: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा, हमजोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: फरमाइश कार्यक्रम विवेक भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं आप बताइए।
1: बस बढ़िया है यहाँ भी, मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लू बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के, मतलब ये जो अपना भारतवर्ष, ये तो त्योहारों का देश है, और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाए, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी जुड़े हुए हैं मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते हैं ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रांझा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं। मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी,
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका जाति मौत में कुर्बानी और आपस में मिलजुल के रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने, और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी,
0: बताइए अपने बारे में क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा सिलाई करते हैं, घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ खुराक में
0: भाई, मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बेग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और इससे।
0: अच्छा जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी, जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं फिर हम रिपेयरिंग करते हैं।
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से, कट फट जाती है। अच्छा बताइए कौन से गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी।
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का बहुत बुआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
0: बाजरी के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी?
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है खाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं, उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बन कर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तल वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में, और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती थानी में सोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, जिससे आने वाले प्रोग्राम चाहे हेलो फरमाइश हो, सेलो लाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 तक वो हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया, और शुक्रिया विविध भारती जो आपके सारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं, और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा। ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है, क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले, हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं, उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
1: जी,
0: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
0: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छितौड़ तहसील खिड़किया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसाने का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी की आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला खासागाम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू। ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: माँ, मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक? क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कम्प्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं CRPF कमांडो में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे प्लीज तुम अभी से पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ मोहम्मद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों?
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में, जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है?
1: ये तो गरीबों को बढ़ना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुनना है गाना पत्थर।

ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 4002462286702888 और हमारा एसटीडी कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022400024662 साथ ही 022287022888 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता।

सुशीला वेंगुर लेकर विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।

अब अभी आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हुए हैं, युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युव वाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: शाम के 5 बज चुके हैं और आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ, जहां लेकर कार्यक्रम युववाणी हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त जीनत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। साथियों, आज है ईद उल अधा का पवित्र त्योहार। आप सभी को इसकी ढेर सारी मुबारकबाद। और आज है दिन गुरुवार। आज के दिन युववाणी कार्यक्रम में होता है लाइव फोनिंग सेगमेंट युवा संवाद। आज जहाँ पर हम सिर्फ एक माध्यम की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन यादों और उन भरोसे की बात करेंगे जिसने पीढ़ियों को एक दूसरे से जोड़कर रखा है। आज के युवा संवाद का हमारा विषय है आज के दौर में रेडियो का महत्व। दोस्तों, साझा कीजिए इस विषय पर हमसे अपने विचार, डायल कर हमारा टेलीफोन नंबर 7376804090 यानी 7376804090। और आइए देखते हैं हमारी पहली कॉलर कौन है। हेलो।
4: हेलो, नमस्कार।
3: नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं।
4: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश सभी बोल रहा हूँ।
3: बहुत बहुत स्वागत है आपका अविनाश जी, और कैसे हैं?
4: जी बहुत बढ़िया है, और आज का जो टॉपिक लेके आई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए आकाशवाणी या रेडियो हम कहें तो हम सबके जीवन में आप वर्तमान युग में भी बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि देखिए आजकल सोशल मीडिया आने के बाद भी हम सब रेडियो में जुड़े रहते हैं, क्योंकि इसके खास एक ही वजह है, क्योंकि रेडियो से देखिए हम सभी को जो सच्चे जो समाचार वगैरह मिलते हैं, या फिर मान लीजिए कि कहीं अगर आंधी तूफान आ गया तो हमारा सोशल मीडिया भी काम नहीं करता है, ठप हो जाता है, उसके बाद ना ही आपका टीवी वगैरह काम करता है, मतलब सभी तरह से हम वंचित हो जाते हैं। लेकिन उस समय हमारा आकाशवाणी रेडियो यही सब हमें उस समय की जानकारी देते हैं, मौसम वगैरह की जानकारी मिलता है, तो हम सभी रेडियो बहुत ही अच्छे एक फायदेमंद चीज है, और इसमें सच्ची सच्ची सच्ची जो समाचार होते हैं।
3: आप रेडियो के जैसे कि नियमित श्रोता हैं और आप हमें कॉल भी लगातार करते हैं, तो हमें ये बताइए कि आपकी जिंदगी में रेडियो से जुड़ी सबसे अच्छी याद कौन सी है?
4: ये सबसे अच्छी याद देखिए 2007 में रेडियो सुन रहा हूँ, और उस समय देखिए हमारी बिजली का बहुत दिक्कत था, तो हम उस समय मेरे दोस्त के सलाह से मैंने पहली बार रेडियो खरीदा था 250 में, उसके बाद से मैं लगातार रेडियो के माध्यम से जुड़ा रहता हूँ। उसके बाद और उस समय देखिए 2007 का सबसे महत्वपूर्ण जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण लम्हा लेके आया था, जो T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा था, उस समय देखिए बिजली की दिक्कत था तो हम देख नहीं पाते थे, रेडियो के माध्यम से जब रेडियो कम्युनिटी की मैंने सुना था वो वर्ल्ड कप भारत जीता भी था, इतना आनंद हुआ था, मैं लगातार रेडियो कमेंट्री भी सुनता हूँ, और जितने भी कार्यक्रम आते हैं मैं सुनने की कोशिश करता हूँ, जानकारी के साथ साथ मनोरंजन खेल कूद हो गया किसानों के लिए सभी प्रकार की जानकारी मिलता रहता है।
3: चलिए अविनाश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप नियमित श्रोता हैं हमारी, और हमें इस तरह से कॉल करते रहिए।

0: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, वक्त बदल रहा है, तकनीक आगे बढ़ रही है, दुनिया स्क्रीन में सिमटती चली गई, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हर दौर में दिलों तक पहुंचती हैं। उन्हीं आवाज़ों में से एक नाम है रेडियो। और आइए देखें हमारे अगले श्रोता कौन जुड़ चुके हैं, इनसे करते हैं बात। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं शिमला से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है राकेश है।
0: शिमला से राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं राकेश जी?
1: बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ना।
0: बहुत अच्छा लग रहा है और हमें भी, क्योंकि आप हमारे नियमित श्रोता हैं और आप हमें नियमित तौर पे कॉल करते हैं। तो ये बताइए, आज तो इससे पता चलता है कि आप रेडियो सुनते हैं, तो ये बताइए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज के दौर में रेडियो का महत्व। क्या लगता है आपको?
1: जी जी जी जी, आज के दौर में रेडियो का महत्व ये है कि हमें रेडियो से हर चीज जानकारी मिलती है, जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और मनोरंजन, मौसम की जानकारी या किसानों के लिए जानकारी। लेकिन हम माना कि अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है, लेकिन सोशल मीडिया के कारण तो यह है रेडियो कहीं ना कहीं रेडियो का चलन अभी भी क्या बोलते उतना ही ग्रे है जितना पहले हुआ करता। हाँ, ये है कि
0: और राकेश जी एक बात और भी तो है ना, जैसे अब लोग क्या कर रहे हैं,
1: ऐप आया तो अब रेडियो का चलन बढ़ गया, लेकिन जो रेडियो का जो आज भी वही दौर है जो पहले है। लेकिन जो हमारे जो कुछ युवा है, मेरे गांव में युवा बोलते कि क्या आप रेडियो सुनते हैं, आप कौन सुनता है। मैं कहा, मैंने उनको ये बताया कि आप रेडियो सुन के देखो, क्योंकि अब सोशल मीडिया जो आप जिस सोशल मीडिया की बात करें तो ये पहले रेडियो था, जब सोशल मीडिया नहीं था तब रेडियो था हमारे पास।
0: तो बिल्कुल, और सोशल मीडिया पे क्या होता है, कई बार हमें कई भ्रामक जानकारियां मिल जाती हैं, लेकिन यदि हम रेडियो सुनते रहें तो हमें खबरें जो रहती हैं वो विश्वसनीयता के साथ बताई जाती हैं।
1: और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं अनेक हर एक केंद्र से जुड़ा हूँ और मुझे हर एक केंद्र से जो ना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कोई चरण नहीं जहाँ मैंने अपनी अपनी भागीदारी नहीं दी जाए टॉपिक।
0: बहुत अच्छी बात है, यही एक सक्रिय श्रोता जो होते हैं आप जैसे लोगों ने आकाशवाणी को।
1: शिमला चलता है तो हर केंद्र से मैं अपना चरण के साथ साथ मैं बाहर के अनेक केंद्र पे जुड़ता रहता हूँ, जिससे क्या होता है हमें देश और प्रदेश
0: दुनिया की तमाम खबरें मिलती रहती है। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे श्रोता आकाशवाणी से जुड़े रहे तो निश्चित ही रेडियो का दौर जो होगा वो कभी खत्म नहीं होगा। और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। साथियों, आज युवा संवाद का हमारा विषय है आज के दौर में रेडियो का महत्व। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा, डायल कर 73-76-80-40-90। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, इनकी लाइन कट चुकी है हम, लेकिन निराश मत हुई साथियों, आप भी डायल करते रहिए 73-76-80-40-90। आइए देखें अगले कॉलर कौन है। हेलो,
2: नमस्ते, हम चांदनी बोल रहे हैं गोंडा से।
0: चांदनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं?
2: हम ठीक है, और आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं, आपसे बात हो गई और भी बढ़िया हो गए, और नियमित श्रोता हैं आप हमारी। आज युवा संवाद में हमारा टॉपिक भी ऐसा ही कुछ है कि आज के दौर में रेडियो का महत्व, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
2: मैम, आज के दौर रेडियो के महत्व के बारे में कहना चाहते हैं। रेडियो कैसी चीज है जिससे हमें डिस्टर्ब कभी नहीं होता किसी चीज के लिए। हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे अगर हम रेडियो बजाकर रख दे रहे हैं तो हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाता है, हमें समय का पता भी नहीं चलता है और हमारा काम भी हो जाता है।
0: बिल्कुल, और जानकारियां भी बिल्कुल इसमें विश्वसनीय होती
2: और
0: हैं।
2: उसके साथ साथ हमें सारी हर दिन की अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती है, कौन सा दिवस किस दिन उस चीज का हमें पता चल जाता है सुबह सुबह बड़ी आसानी से।
0: चांदनी जी, कभी ऐसा हुआ है कि रेडियो पर कोई जानकारी आपने सुनी हो और उसका आपने लाभ उठाया हो?
2: यस मैम, बहुत सी जानकारियाँ ऐसी है जो हमें नहीं पता थी पता चल गई हैं।
0: अच्छा, कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहती हूँ अगर तो बताइए।
2: बहुत बहुत छोटे थे तो हमें ये नहीं पता था पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें रेडियो से ही पता चला था 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें रेडियो से पता चली है, 25 दिवस कब मनाया जाता है, ये सारी चीजें रेडियो से ही पता चली है।
0: बिल्कुल, शिक्षा, ज्ञान और मनोरंजन, इसके साथ ही ये हमारे रेडियो की पहचान है। और उम्मीद है कि आप और लोगों को भी प्रेरित करती होंगी रेडियो के लिए, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो तो बस दिन भर मोबाइल में ही लगे रहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप?
2: या मैम उसके बारे में कहना चाहती हूँ, हमें रेडियो सुनना चाहिए क्योंकि रेडियो से मतलब सबसे बड़ी फायदा तो हमें ये, हमारी आंखें मतलब से बची रहती है,
0: बची रहती है। और यही

0: कारण है कि सोशल मीडिया और वीडियो जो कंटेंट है उसके दौर में अब लोग ऑडियो पॉडकास्ट वगैरह सुनने लगे हैं। चलिए चांदनी जी आपसे बात,
1: हमें तो बचपन से ही शौक है रेडियो सुनने का।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है ये, और आपका ये शौक बरकरार भी रहना चाहिए, हमारा यही पूरा प्रयास रहेगा। चांदनी जी कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। तो साथियों ये थी हमारी श्रोता जिनका नाम था चांदनी, इन्होंने हमसे बहुत अच्छी बातें की, और आज का हमारा विषय है युवा संवाद का, आज के दौर में रेडियो का महत्व। आप ही बन सकते हैं हमारे कार्यक्रम का हिस्सा डायल करके 7376-8090। आइए देखें अगले कॉलर कौन है। हेलो
2: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं।
2: मेरा नाम संदीप कुमार, भारतीय ग्राम बंगेरिया पोस्ट लाइफ गोंडा से बात कर रहे हैं।
0: अच्छा संदीप जी, कैसे हैं आप?
2: ठीक है मैम, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। और ये बताइए कि आज आपने युवा संवाद में कॉल लगाई है, आज का हमारा जो विषय है वो है, पहले आप किसी शांत जगह पे चले जाइए, पीछे रेडियो की आवाज जो आ रही है वो बहुत तेज है।
2: अभी मैं विषय क्या है आज का?
0: आज का हमारा विषय है कि आज के दौर में रेडियो का महत्व। बताइए रेडियो सुनते हैं आप?
2: यस मैम, रेडियो तो बहुत सुनते हैं हम लोग, रात में सुनते हैं, दिन में सुनते हैं, जब टाइम मिलता है तब सुनते हैं।
0: तो आप
2: बहुत महत्व,
0: तो आप ये बताइए मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में आज रेडियो की कितनी अहमियत बची हुई है?
2: सोशल मीडिया से तो बहुत ही अच्छा है मैम, क्योंकि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो रेडियो लगा लिए, सुनते रहिए, आप चाहे जहाँ भी रहें रेडियो सुने और उस पर अच्छी अच्छी जानकारियाँ, समाचार, गाने, हर प्रकार की जानकारी मैम मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मैम रेडियो।
0: अच्छा,
2: और हमारे जीवन का एक मतलब हिस्सा होता है रेडियो।
0: ये बहुत बड़ी बात आपने कही। अच्छा संदीप जी, हमें ये बताइए कि रेडियो समाज में जागरूकता फैलाने का प्रभावी माध्यम है कि नहीं? यदि है तो कैसे?
2: प्रभावी माध्यम है, रेडियो के माध्यम से हम अनेक प्रकार की जानकारी दे सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जैसे आपका मतलब एक प्रसारण आता है कि पानी को छत पे, मतलब छत पे पानी रखो, चिड़ियों को पानी दो, दाना दो, ये सब मतलब लोगों को जागरूक करना तो है मैम,
0: हीट वेव से बचाव के लिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इस तरह से समय समय पर लोगों को इस तरह से जागरूक किया जाता है रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से। तो आप मतलब ये सब सुन के रेडियो से इसका अमल करते हैं?
2: बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं करते हैं, और इमारी में इतने अच्छे अच्छे प्रभावी प्रोग्राम आते रहते हैं, अच्छे अच्छे मतलब विषय आते रहते हैं, उस पर चर्चा होती है, हर प्रकार का संवाद होता है।
0: चलिए संदीप जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आप और लोगों को भी प्रेरित करते रहिए रेडियो के प्रति, और दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। साथियों आज युवा संवाद का हमारा विषय है आज के इस दौर में रेडियो का महत्व। आप भी बन सकते हैं हमारे कार्यक्रम का हिस्सा, डायल कर हमारा टेलीफोन नंबर 7376-8090। आइए देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, अपने आप किसी एकांत जगह पे चले जाइए, रेडियो की आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए ताकि हम आपसे सही से बात कर सकें।
3: हाँ,
0: अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं।
3: कृष्णा पांडे, हनुमानगढ़ी से बात कर रहे हैं।
0: कृष्णा पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवाणी कार्यक्रम में, हनुमानगढ़ी अयोध्या से आपने हमें कॉल लगाई है। ये बताइए आज का जो हमारा विषय है वो है आज के दौर में रेडियो का महत्व। आप रेडियो सुनते हैं?
3: जी नहीं।
0: ये बताइए, आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है, क्या आप किसी एकांत जगह पे जा सकते हैं? साथियों हेलो, दोस्तों इनकी कॉल कट चुकी है, लेकिन निराश मत होइएगा, डायल करते रहिए हमारा टेलीफोन नंबर 7376-8090। आज युवा संवाद का हमारा विषय है आज के दौर में रेडियो का महत्व। आप भी साझा कर सकते हैं हमारे साथ अपने विचार। आइए देखें अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं। हेलो
4: नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं?
4: स्वाति सिंह बात कर रहे हैं, अंबरपुर मनका से, गोंडा से।
0: स्वाति जी अंबरपुर मनका कहाँ से है, गोंडा में?
4: अंबरपुर मनकापुर गोंडा से।
0: मनकापुर गोंडा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवाणी कार्यक्रम में, कैसी है स्वाति?
4: थैंक यू।
0: ये बताइए, आज आपने युवाणी कार्यक्रम में फोन लगाया है युवा संवाद में, जिसका विषय है आज के दौर में रेडियो का महत्व। क्या लगता है आपको, रेडियो सुनती हैं?
4: हाँ मैम सुनते हैं, बचपन से ही सुनते हैं रेडियो, और रेडियो हम लोग का ही मतलब सच्चा हम सफर है, क्योंकि हर जब हम काम करते रहते हैं रेडियो सुनते रहते हैं, तो काम भी बढ़िया से हो जाता है।

0: जानकारी भी हमको अच्छे से मिल जाती है पूरी।
1: ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जानकारी मिलती है, जागरूकता मिलती है। तो आप ये बताइए कि क्या ग्रामीण क्षेत्र जैसे गांव के जो क्षेत्र हैं उसमें महिलाओं तक जो जागरूकता फैलाने में रेडियो जो है वो एक अहम भूमिका निभाता है?
0: जी मैम,
1: है ना। कोई ऐसा आपने कभी देखा हो कि किसी चीज के बारे में आपको जानकारी ना हो और आपने रेडियो पर उसको सुना हो?
0: जी मैम, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आती है और सबके लिए भी मैम, जैसे मतलब बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, मतलब जानकारी हर मायने में मतलब मिलती रहती है सबको।
1: बिल्कुल, जानकारी मिलती है और विश्वसनीय जानकारी मिलती है।
0: जी मैम, सबका रहता है और सब कुछ अच्छी खबर रहती है रेडियो की।
1: अच्छा हमें ये बताइए, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो तो रेडियो से दूर हो रही है, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं नए संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी आने वाली पीढ़ी है तो उनको रेडियो सुनने के लिए जरूर प्रेरित करें, क्योंकि रेडियो एक ऐसा साधन है जिससे हमको हर चीज की जानकारी मिलती है, रहने की और फिर उसके बाद में बोलने की जानकारी, हर कुछ सीखने की जानकारी मिलती है। जैसे गागर में सागर भरने की आधा रेडियो के अंदर है, मन रहती है।
1: चलिए स्वाति जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो दोस्तों ये थी हमारी साथी स्वाति और चल रहा है युवा संवाद, जहाँ पे आज का हमारा विषय है आज के दौर में रेडियो का महत्व। आगे करेंगे बातें आपसे और भी, लेकिन फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
3: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम युवाणी में, जहां चल रहा है लाइव फोनिंग सेगमेंट युवा संवाद। अभी अभी ट्यून किया है आपने रेडियो तो हम बता दें आपको कि आज का हमारा जो विषय है दोस्तों वो है बदलते दौर में रेडियो का महत्व। आइए देखते हैं हमारे साथ अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए। डायल करके हमारा टेलीफोन नंबर 73-76-80-40-90। हेलो
4: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल लगाई है आपने हमें?
4: जी मैं राजन सिंह बोल रहा हूँ, आजमगढ़ से।
1: राजन सिंह जी, आजमगढ़ से कॉल लगाई है आपने हमें, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
4: जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है।
1: बहुत अच्छे हैं और गर्मी के इस मौसम में ध्यान रख रहे हैं अपना?
4: जी गर्मी तो इस समय 40-45 डिग्री चल रही है, बहुत भयंकर गर्मी है, इससे बचना बड़ा जरूरी है।
1: बचना बहुत जरूरी है और घर पे रहिए और रेडियो सुनिए।
4: हमारे तो जो भी काम होता है सुबह 9 बजे 10 बजे तक काम को अपना समाप्त कर लेते हैं, तो इसके बाद कहीं अगर चलते भी हैं तो 3-4 बजे के बाद।
1: हाँ बहुत सही बात आपने कही कि 3-4 बजे के बाद ही निकलना चाहिए, इतनी धूप है। आज के दौर में रेडियो का महत्व, इस विषय पर आज हम आप बात कर रहे हैं अपने श्रोताओं से, आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी रेडियो का महत्व तो बहुत जरूरी है और रेडियो के माध्यम से जो है हम अपनी बात रख सकते हैं, देश के किसी कोने में भी अपनी बात हम पहुंचा सकते हैं,
1: सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
4: रेडियो से जो तरह तरह की हमें जानकारियां मिलती हैं, बहुत तरह तरह की जानकारियां मिलती है देश के बारे में, कोई भी चीज है सबके बारे में जो है जानकारी अच्छे से मिलती है जी।
1: और सबसे सरल और सबसे सस्ता साधन भी है ये मनोरंजन का। राजन जी आप कब से सुन रहे हैं रेडियो?
4: ये?
1: आप कब से सुन रहे हैं रेडियो?
4: रेडियो मैडम जी हम कम से कम 10-12 साल से सुन रहे हैं।
1: अच्छा, रेडियो से जुड़ी कोई ऐसी याद हो जो आप अपने सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहते हो, साझा करना चाहते हो?
4: यही लोगों से कहना चाहते हैं कि रेडियो एक अच्छा माध्यम है, इससे जुड़े रहें और नई नई जानकारियां मिलती हैं उसको प्राप्त करते रहें।
1: चलिए जानकारियां प्राप्त करते रहिए क्योंकि ये सबसे विश्वसनीय माध्यम है। राजन जी आपका कॉल करने के लिए हम

0: बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। साथियों, हम बात कर रहे हैं आज के दौर में रेडियो के महत्व की, और युवा संवाद में आज का हमारा ये विषय है। आइए देखें हमारे अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं डायल कर हमारा टेलीफोन नंबर। हेलो हेलो, अपना नाम बताइए और कहां से कॉल लगाई है आपने हमें।
1: मैडम नमस्ते, मैं सिद्धार्थ जायसवाल बोल रहा हूँ अयोध्या साकेतपुरी से, देवकाली के पास से।
0: सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: एकदम बढ़िया मैम, एकदम बढ़िया।
0: आज आपने युवा संवाद में कॉल किया है हमें, और आज का जो हमारा विषय है वो है आज के दौर में रेडियो का महत्व। आप रेडियो सुनते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए।
1: जी मैम, मैं रेडियो सुनता हूँ, और बचपन में मेरे पिताजी की रेडियो की दुकान भी थी।
0: अरे वाह,
1: तो मैं बचपन से ही रेडियो का शौकीन हूँ।
0: तो आपने तो तरह तरह के रेडियो देखे होंगे ना अपने पिताजी की दुकान पे, छोटे बड़े हर तरह के।
1: लकड़ी का जब बन के आता था ट्रांजिस्टर वगैरह, तब से मैंने देखा है। पिताजी हमारे, उसकी दुकान थी, रिपेयरिंग भी करते थे। लोगों में जितना जोश, जितना जुनून था उस टाइम रेडियो का, शादी ब्याह होता था, लोग शौकीन रहते थे कि शादी में मुझे रेडियो मिलेगा, इतना खुश रहते थे लोग। रेडियो बजता था तो लोग इकट्ठा होके बैठते थे, शाम को जब समाचार उस पे आता था लोग सुनते थे उसको, तो वो मिठास ही कुछ और रहती थी पहले।
0: बिल्कुल, रेडियो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि घरों में अपनापन, मुस्कान और एक साथ होने का एहसास लेकर आता था।
1: जी मैम, उसमें क्या होता था, पहले जब रेडियो कहीं बजता था तो गांव के आसपास के जो है बड़े बुजुर्ग लोग बैठते थे, इकट्ठा होते थे, समाचार उसी में सुनते थे लोग, तो बहुत सा अच्छा लगता था। एक
0: कुछ लोग समाचार सुनते थे, कुछ नाटक सुनते थे, है ना, कुछ समाचार सुनते थे, कुछ नाटक, कुछ गाने। तो
1: इस समय मैं एक दवा कंपनी मैनकाइंड फार्मा में जॉब कर रहा हूँ अयोध्या में, तो मैं बताना चाहूंगा कि रेडियो।
0: हेलो दोस्तों, हमारे श्रोता थे, इनसे बहुत अच्छी बात हो रही थी लेकिन किन्हीं कारणों से इनकी कॉल कट गई है, पर निराश मत होइए, डायल करते रहिए हमारा टेलीफोन नंबर 7376804090। और आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो
2: हेलो,
0: अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं।
2: जी मैम, मेरा नाम किंजालाल पटेल है, मैं अयोध्या से बात कर रहा हूँ।
0: अपना नाम एक बार पुनः दोहराइए।
2: मैम मेरा नाम किंजालाल पटेल है।
0: कन्हैयालाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, कैसे हैं?
2: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, और आज आपने युवा संवाद में कॉल किया है। आज का जो हमारा विषय है वो है आज के दौर में रेडियो का महत्व। आप रेडियो सुनते हैं?
2: जी मैम, कभी कभी न्यूज ऑन AIR सुन लेते हैं।
0: न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती का ऐप है। तो हमें ये बताइए, कोई ऐसी याद जब आप बचपन में सुनते हो, या फिर पिताजी, या फिर किसी के भी माध्यम से आपने रेडियो को पहली बार देखा या सुना हो, तो कोई याद अगर आपकी हो तो आप हमें बताएं।
2: जी मैम, पहले बचपन में लाइट नहीं आता था तो क्रिकेट मैच सुनते थे।
0: ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, और काफी सारे लोग इकट्ठे होके सुनते रहे होंगे, है ना?
2: जी जी जी।
0: तो वो दौर और आज का दौर कैसा लगता है आपको?
2: क्योंकि मैं वो दौर जो था, मतलब चार पांच लोग बैठ के सुनते थे, आपस में ओपिनियन रखते थे, पर आज के युग में ऐसा नहीं है, आज लोग अकेले ही देख रहे हैं।
0: अकेले ही देख रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं रेडियो लोगों को जोड़ने का काम करता था। ढेर सारे लोग इकट्ठे होकर बैठते थे, बात करते थे।
2: जी।
0: तो आपको क्या लगता है कि हम रेडियो को और प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, वो लोग सोशल मीडिया और वीडियो कंटेंट के दौर में, जैसे आंखों को यदि दिक्कत हो रही है तो ऑडियो कंटेंट की ओर वापस वो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
2: मैम, अब धीरे धीरे लोग इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब पॉडकास्ट वगैरह जैसे लोग ऑडियो में सुनना ज्यादा पसंद करने लगे हैं।
0: ऑडियो में इससे क्या होता है, समय कई सारी जानकारी
2: का बचत भी हो जाता है मैम, और नॉलेज भी अच्छा मिल जाता है,
0: और ऑडियो फॉर्म में रहता है तो हम दूसरा काम भी कर सकते हैं।
2: जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने हमसे, और कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। साथियों, चल रहा है युवा संवाद, और आज के हमारे युवा संवाद का विषय है आज के दौर में रेडियो का महत्व। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा, डायल करके 7376804090। और दोस्तों आइए देखते हैं हमारे अगले

0: कॉलर कौन है? हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, इनकी कॉल कट चुकी है, लेकिन आप निराश मत होइए, कॉल करते ही रहिए, क्या पता अगली कॉल आपकी ही हो। आज का हमारा युवा संवाद का विषय है आज के दौर में रेडियो का महत्व। आइए देखें हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रही हैं।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। क्या नाम है आपका? हेलो,
1: मेरा नाम है कामनी सनाहा जी हूँ।
0: कामनी जी, कहाँ से कॉल लगाई है आपने?
1: कनाहा से।
0: कनाहा, कहाँ पे पड़ता है ये कनाहा? हम तो पहली बार
1: नाम। सुहावल के पास।
0: सुहावल के पास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बार कॉल लगी है आपकी यहाँ?
1: Yes,
0: तभी तो हम कहे ये जगह कहाँ पे, हमें पता नहीं चली, आपने बताया तो हमें पता चला कि ये जगह भी है। और कैसी हैं आप कामिनी जी? बढ़िया हैं?
1: ठीक है।
0: ये बताइए, आप इतना शर्मा क्यों रही हैं? बहुत धीरे बोल रही हैं, थोड़ा खुल के बोलिए ना।
1: ठीक है मैम।
0: अच्छा ये बताइए, रेडियो सुनती हैं कि नहीं सुनती हैं?
1: Yes, मैम, सुनते हैं।
0: तो आजकल तो जैसे फोन का जमाना है ना, इंटरनेट का जमाना है, अब तो AI भी आ गया है, तो ऐसे दौर में रेडियो का क्या महत्व रह गया है?
1: बहुत महत्व है मैम।
0: जैसे कुछ बताना चाहें तो?
1: जैसे कि रेडियो से हमें नई शिक्षा, नई सीख मिलती है।
0: कामिनी जी बड़ा धीरे बोल रही हैं, बड़ा रुक रुक के बोल रही हैं आप, हम ही बोलें क्या? हेलो।
1: हाँ मैम।
0: इतना डरी हुई क्यों हैं आप? चलिए हम ही आपसे बात करते हैं। अगर आपसे पूछा, आपके घर में और लोग सुनते हैं रेडियो? गाना सुनना था आपको। गाना सुनने के लिए तो आकाशवाणी पे और भी कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पे तो हम बात करने के लिए जुड़ते हैं आप लोगों से। चलिए गाना सुनने के लिए किसी और दिन हम आप कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है? फिलहाल आज के लिए इतना ही। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज के दौर में रेडियो के महत्व की, और रेडियो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि घरों में अपनापन, मुस्कान और एक साथ होने का एहसास लेकर आता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, समय रुकता नहीं, टेलीविज़न आया, फिर इंटरनेट, फिर सोशल मीडिया का दौर, और दुनिया तेज़ी से बदलती चली गई और ऐसा लगा जैसे रेडियो पीछे छूट जाएगा। लेकिन रेडियो ने हार नहीं मानी, उसने खुद को समय के साथ बदला और आज भी हमारे साथ उपस्थित है। आज के दौर में रेडियो केवल ट्रांजिस्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, पॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। आज के युवा मोटिवेशन, करियर, शिक्षा, संगीत, समाचार और सामाजिक मुद्दों से जुड़े पॉडकास्ट, साक्षात्कार सुनते हैं। तो मित्रों, ये तो आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया में जहां गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, वहीं रेडियो आज भी अपनी विश्वसनीयता के कारण लोगों के बीच अपनी पहुंच बरकरार रखे हुआ है। तो रेडियो केवल स्वरों का माध्यम नहीं बल्कि ये भावनाओं का रिश्ता है, ये वो साथी है जो हर दौर में लोगों के साथ चला है और आगे भी अपनी जगह बरकरार रखेगा। और इसी के साथ युवा संवाद में अब हो गया है आप सभी से विदा लेने का वक्त, लेकिन बता दें आपको चलते चलते कि कल की युवाणी कार्यक्रम में आप क्या सुनेंगे। कल हम युवाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, इसके साथ मिशन लाइफ सतत खाद्य प्रणाली अपनाएं। साथ ही स्थान सेगमेंट में हम बात करेंगे मैड्रिड की, और शब्दावली सेगमेंट भी होगा कल, तो ज़रूर सुनिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त जीनत को दें अनुमति। नमस्कार।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
5: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: 2 लाख क्या हुआ पापा?
5: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
5: काट दिया,
6: पैनिक मत कीजिए।

0: पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
0: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
2: RBI कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम लोक संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं अमरनाथ यादव और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:00

0: बजकर 45 मिनट से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com vani@gmail.com।
3: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
4: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
6: कार्यक्रम लोक संगीत में आइए अब सुनते हैं अरुण कुमार कोरी और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।
7: अरे कान्हा बा पे हाला बा उठाए के, अरे कान्हा बा पे हाला।

0: चली गोरिया खेतवा की ओरिया
1: चली गोरिया खेतवा की ओरिया
0: अरे कनावा पे हलवा उठाई के अरे कनावा पे हलवा

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देवरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देवरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्ण पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों के कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए एक खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या की सूचना अनुसार राकेश जायसवाल सूचित करते हैं कि इनके पुत्र विशाल जायसवाल निवासी ग्राम टेढ़िया गली गोसाईगंज थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या विगत 17 अप्रैल 2026 को टेढ़िया गली गोसाईगंज से कहीं लापता हो गए हैं। लापता विशाल जायसवाल की उम्र 14 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा सामान्य है। घटना के समय ये नीले रंग की शर्ट और काले रंग की जीन्स पहने हुए थे। लापता विशाल जायसवाल के बारे में यदि कोई जानकारी आपके पास हो तो कृपया अपने निकट की पुलिस चौकी थाना कोतवाली या कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज। फिल्म का नाम है उफ ये मोहब्बत।

आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: पटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तंत्रांशे अभी उपलब्धो भविष्यति। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये जायमाना शिथिल युद्ध विरामावस्था इदानीं गंभीर संकटे समापतिता। यतः हि द्वाभ्याम् अपि पक्षाभ्याम् होर्मुज इत्यस्य समीपे परस्परं सैन्य आक्रमणानि कृतानि। अमेरिकी सेनायाः कथनमस्ति यत् तया ईरान देशस्य चत्वारि आक्रामक ड्रोन विमानानि निपातितानि तथा च बंदर अब्बास क्षेत्रे स्थिते ड्रोन नियंत्रण केन्द्रे भीषण प्रहारः कृतः। अत्रांतरे ईरानस्य इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स इति दलेन अपि एतस्य प्रहारस्य प्रमाणत्वेन प्रोक्तं यत् प्रतिकार स्वरूपेण तैः अमेरिकी सैन्य शिविरे आक्रमणं विहितम्। कुवैत प्रशासनेन पूर्वमेव सूचितम् आसीत् यत् ते स्वकीये क्षेत्रे शत्रुपक्षस्य ड्रोन आक्रमणानां दृढ प्रतिकारं कुर्वन्ति। अस्याः सद्यो जातायाः सैन्य उत्तेजनायाः कारणेन वाशिंगटन तेहरान नगरयोः मध्ये युद्धविरामस्य विस्ताराय जायमानैः कूटनीतिक प्रयासैः सहसा महती क्षतिः अभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य पुनरेकदा अवैध प्रवासीनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षा सुदृढ़ीकर्तुं च सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनरपि दृढ़तया प्रतिपादितवान्। गांधीनगरे 44.30 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां संबोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत् यतः एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्म वार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाह अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रांतरे सः अहमदाबाद नगरे आगामीनां ओलंपिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्व आरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षा करिष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य CBSE इति द्वादश कक्षायाः मूल्यांकनम् प्रक्रियायां सहैव एतस्य नूतन पटलाधारित अंकन प्रणाल्यां च जातानां प्राविधिक त्रुटीनां च संज्ञानं गृहीतवान्। मंत्रिणां एतेषां विसंगतीनां विषये छात्राणां शंका समानार्थं दृढ आश्वासनं प्रदत्तम्। शिक्षा मंत्री प्रोक्तं यत् इयं पटलाधारित अंकन प्रणाली पारदर्शितां सुनिश्चेतुं कश्चन प्रगतिशील उपायात्मक मञ्चः वर्तते। सः नवदिल्ल्यां CBSE अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विधाय अनन्तरं वार्ताहरान् संबोधितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे अधिकारिणः इदं सुनिश्चयन्ति यत् कस्यापि छात्रस्य जिज्ञासा यथावत् न तिष्ठेत तथा च सर्वेषु स्तरेषु उत्तरदायित्वं सुदृढं स्यात्।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: पुर ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यतनः दिवसः भारतस्य कृते अतीव गौरवपूर्णः आसीत्। भारतस्य प्रमुख क्रीडकाः लक्ष्य सेनः पीवी सिंधु चिराग शेट्टी सात्विक साईराज रंगी रेड्डी इत्यनयोः पुरुष युगलदलं तथा च ध्रुव कपिला तनीसा क्रेष्टो इत्यनयोः मिश्रित युगलदलं च स्व स्व प्रतिस्पर्धासु विजयं प्राप्य प्रागुपान्त्य चक्रे प्रविष्टवन्तः। महिला एकल क्रीडायां 16 चक्रे पीवी सिंधु जापान देशस्य रीको गुंजी 21-9, 21-12 इत्यंकांतरालेन पराजितवती। आगामी स्पर्धायां सा दक्षिण कोरिया देशस्य एनके यंग इत्यनेन सह स्पर्धिष्यन्ते। अत्रांतरे पुरुष एकल क्रीडायां थाईलैंड देशस्य द्वितीय वारीयता प्राप्त क्रीडक कुनलावुत विदित शार्नः स्पर्धायाः आरंभे एव आहतो भूत्वा क्रीडांगणात् बहिर्जातः येन लक्ष्यसेनः आशयान स्वकीय स्थानं सुरक्षितवान्।

0: इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर

0: सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
1: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं शशिकांत मिश्र और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

0: बचवन के माटी ना बनावा भाऊजी, आगम बचवन के माटी ना बनावा भाऊजी, अपन लड़कायो
1: छविलाल पाल और साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।
6: किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
7: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
8: पुतला बोल रहे?
7: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
8: मतलब?
7: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
8: परंतु सभी डाले हैं।
7: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
8: सच
7: है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
8: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
9: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
10: पंचो जय हिंद।
11: रामू भैया।
10: हाँ भैया।
11: देखा आज अपने कार्यक्रम में तमाम जानकारी के बाद तो मन मनसायन है
10: बिल्कुल, लेकिन एक सूचना है ना। हाँ। पंच भैया के इंतजार रहा है कि आज फोन इन हुई, तो एक बात का बता दिया कि आज कोनो कारण बस वो कार्यक्रम ना हो पाता है।
11: हाँ, आगे फिर बीफे का, हर बीफे का जैसे अपन फोन इन उतरा वो हुई, लेकिन आज कोनो कारण से नहीं हो पा रहा है और आगे ऐसे ही चलत रही। लेकिन जहाँ तक बात आज के है
10: जी,
11: देखा भाई, हर पंच खेती किसानी कह रहा है और हमार सबके तो जीवन के आधार है कि खेती किसानी है।
10: बिल्कुल सही कहा था। और एक बात और ही है ना कि अपने सब पैदा खेती मवाई अपन बापे के सक रहे, तो अपने सबके तरह करना कि खून खून

0: खेती समाय गया है।
1: देखा रामू एक बात कहवे हम
0: कहा
1: कुछ है लोगन के जय बोली जात है।
0: एकदम सही कहा जी, मत सबसे पहले पंच भैया के जय रहा था।
1: हाँ, तो जैसे जवान हैं, किसान हैं, हैं? तो और दूसरी चीज एक चीज और कहा कि भगवान तो मान लिया ईश्वर सबसे बड़ा है ये है, लेकिन लोगन का जो वास्तविक रूप में जो मेहनत कह रहा है धरती पर से अनाज पैदा कह रहा है वो किसाने हैं कि जन जन तक भोजन पहुंचा रहा है, अनाज पहुंचा रहा है और लोग खाए के वही से जीवित हैं।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: चाहे अनाज हुए, धान गेहूं गन्ना हुए, चाहे फल फ्रूट हुए, जौन भी खाए पिए वाली चीज है, दूध दही घी, ये सब किसान के द्वारा ही समझ लिए मिलत है पंच का। और यहीलिए ओके बात तो किसान ही है।
0: बिल्कुल सही कह दिया, यहीलिए जय जवान जय किसान के नारा दिन गया है कि नहीं।
1: हाँ।
0: अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, और वही में जरा सा जोड़ी नहीं अपने अटल जी कहीं जय विज्ञान,
1: नहीं देखो विज्ञान
0: देखा तुरंत मोदी जी आई कहीं जय अनुसंधान। हाँ। और सबका जोड़ किला यही मतलब रहा कि हमारे किसान, हमारे खेती, हमारे देश सब आगे बढ़ जाए।
1: भाई देखो विज्ञान के भी बहुत जरूरत है, अनुसंधान के भी जरूरत है।
0: हाँ।
1: और अनुसंधान पर जोर दिया जा रहा है, अनुसंधान के बाद ही कोनो चीज जब निकल के आवत है तब हम वहाँ अपने खेती किसानी या कोनो काम में वहाँ हम उपयोग में लाई थे और वह से हमारे प्रगत होते है।
0: बिल्कुल।
1: रही बात जहाँ तक खेती किसानी के, तो हमें सब कच्चा ही कि जो हमारे खेत खाली है कौनो तरह से जब भी मौका मिले उमन गर्मी के जुताई जरूर करी।
0: बिल्कुल सही कहा था,
1: काहे से गर्मी के जुताई से हमारे खेते के माटी बहुत अच्छी हो जाते है, घास फूस या जो हानिकारक कीट है ये सब नष्ट हो जाते हैं।
0: ये एकदम सही क्या, यही लिए गर्मी के गहरी जुताई पर सबका करेक चाहिए,
1: करेक चाहिए। और गहरी जुताई से यही होते है कि जब बरसात होते है और पानी भरत है तो पानी यह सोच चाहिए ना कि वो नीचे सोख जाए।
0: बिल्कुल एकदम सही,
1: उखलाए के बहके न जाए। इतनी मतलब गहरी जुताई की है से जो नीचे के एक परत होते है वो परत टूट जाते है, जो कठोर परत होते है, और वो चूंकि बराबर हम एक के अस्तर पर जब जुताई करी थे तो नीचे कठोर परत बन जाते है और वो परत टूटब जरूरी है। और जब पानी नीचे चला जाता है सूख जाता है तो वह से हमारे खेते मा खेते के माटी मा
0: जल धारण क्षमता जो नहीं है।
1: हाँ,
0: बनी रहा
1: वो बनी रहा तो ओके साथे जो सबसे बड़ा फायदा है
0: जो
1: उन हानिकारक लवण है वह पानी के साथे घुल के नीचे चले जाते हैं और नहीं तो फिर वो ऊपर आवे लागत है। जैसे अब तुम्हें बता दी,
0: बताओ
1: ऊसरीली भूमा ध्यान दियो कि जल्दी पानी नहीं सोखत है।
0: एकदम सही बात क्या पंच भैया परेशान रहा कि आज सींचे रहे फिर सींचे लायक हो गया।
1: उसरीली भूमि में पानी नहीं सोखत
0: है,
1: चूंकि उनके नीचे जो कठोर परत है वो नीचे के जो हानिकारक लड़ू ऊपर आ जाते हैं।
0: हाँ।
1: और खेते की माटी हमारे खराब हो जाते है, यही लिए हमें चाहिए कि गहरी जुताई जरूर करी, साथे साथे जो उन खाद पास हुए जो उन देसी खाद हुए वहू का हम खेते में यही लगे मिलावत रही। हरी खाद अगर पंचे बोए है तो वह का समय जब उनके तैयार हो जाए तो खेतन में उनके पलटाई कई दिए और ऐसा ही घाम होता है पानी भरी है बहुत जल्दी उपन सड़न पैदा हुई।
0: बहुत सही कह दिया, और यही सही पंच भैया के पास समय है ना कि अपने माटी के जांचो करा ली है कि नहीं।
1: बहुत जरूरी है माटी जांच, बहुत जरूरी है क्योंकि माटी जांच से ही पता चल जाते है कि हमारे खेतन में कौन कौन पोषक तत्व तो कितनी मात्रा में है, कौनों की कमी है या कौनों को अधिकता है,
0: अगली फसल के तहत कौन चीज जरूरी है।
1: हाँ।
0: वही जान जी अनावश्यक न दे है
1: तो वो के कराऊ माटी के जांच बहुत जरूरी है, माटी के जांच करा लिए अब बस तैयारी के लिए। और एक बात और कहबे कि खरीफ के मौसम समझ लो कि बस आएगा है और खरीफ के मौसम के खातिर अब से ही अंदाज लिए कि कौन कौन फसल हमें बोए के वह के कौन प्रजाति बोए के उसके बिया के इंतजाम करें और कोशिश करें कि अच्छा उन्नतशील बिया जहां भरोसेमंद जगह हुए वहीं से खरीदें, चाहे सरकारी संस्थान से लिए चाहे कृषि विश्वविद्यालय से ले लिए जो विश्वसनीय स्रोत जी का कहा जाता है ना, विश्वसनीय स्रोत।

0: से बिया खरीदें और चाहे धानिक हुए, चाहे अलहरिक हुए, चाहे वो कहे ज्वार के हुए, बाजरा जो भी वो एक है, वह के लिए अब वैसे के ध्यान रखें और खेत तैयारी बनाए रहें, जब समय मिले तो वो के बुआई जरूर करें। नर्सरी डार्ट के भी के ध्यान रखें कि हमें अब वैसे के तैयारी करें कि कौन बिया हमें वो एक है, वो बिया की व्यवस्था करके नर्सरी डार्ट दें।
1: एकदम सही क्या कहे से ना, फिर नायत्व वाली हाल हुई कि मन पछता ही है अवसर बीते, जब समय आए तो फिर पाई है ना, ये लिए उनका ही ध्यान देखा। लेकिन एक बात बताई ना, अब हम गा रहे गाँव में आयत रहे तो छतीरवा पोरक लगे है भदरसक बगलिए, एक अनुभवी किसान रहे गैदत्त मिश्र भैया, और वह अपन अनुभव था ना बढ़िया से बताओ रहे आज से ना है। कहीं सामा कोदो हम खाए ही कैसे होत रहा हमारे सब अपना पैदा के ही जो ना भाई गर्मी वाली गहरी जुताई बताए ना बताओ रहे तब सब खूब लगा लगा गहरी जुताई के बड़ा बढ़िया छोड़ दिए रहे और गोबरे खाद जो ना भाई बताए ना देखे खेतों में बड़ा बढ़िया भाई करे रे और वही के बगले सब भैंस चरावत रे सत्ताईस ऐसा बगिया में जानते हैं पंच भैया कितना बढ़िया से चिल्लाता है इस सब अब उनके मुंह से सुन बना इतना अच्छा लगे कहते
0: तो आओ सुना जाए और पंचो सुना
1: दत्त दत्त।

0: राम भैया।
1: हाँ भैया,
0: देखा कितनी बढ़िया अनुभव के बात रही गया दत्त मिश्रा भैया के, और उम्मीद के थे कि पंच के भी निक लग भाई।
1: बिल्कुल, अब पंच भैया के लगे इतना अनुभव रहा थे ना कि जब उनके लगे बैठिया तो पते ना चलत कि समय वा कब भी थी, लेकिन ऐसा ही छुट्टी चलती है। लड़का बच्चा का पढ़ाए का है, जब पढ़िए तब आगे बढ़िए, कैसे जैसे बन्नात और उनके साथ ही गौनाइम गावदा है।

0: ओम भैया देखा ही तो बात रही कि सब पढ़िए तब है सब बढ़िए, लेकिन आज आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से जो अपने सबका मौसम की जानकारी मिली है वो पंच का बताओ।
1: अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस जो उनकी सामान्य से 1.5 डिग्री कम रहा, कहे मतलब कुछ गनीमत है। और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस जो उनकी सामान्य रहा, और सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम रही 78% और न्यूनतम 40%।
0: हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही और एक दिशा रही दक्षिणी पूर्वी। आने वाले 24 घंटे के बारे में अनुमान है ना कि अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का बादल छावा रहे, कहूँ कहूँ गरज चमक के साथ अरे भैया बूंदाबांदी हो सकता है, और पूर्वी हवा के सामान्य व सामान्य से तेज गति से चले के संभावना है। तो देखा भाई जब बूंदाबांदी की बात होगी ना तब तो मन में होता है ना कि अपनों सब फटाफट भाग के कहाँ पहुंची
1: घरे
0: कई लड़का बच्चा पशु प्राणी सब लकत रहा थे कि कब आई है।
1: हाँ चले ठीक है और मौसम ठीक रहा है यही अच्छा ही है, और आगे फिर अगले दिन अगले कोनो कार्यक्रम में मिला जाए। तब तक खातिर पंचोम
0: और रामू का दिए अनुमति।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर एक नजर।

हमारे आज के शेष कार्यक्रमों में रात्रि 8:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन, 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कल प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम विवरण, 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश और 8:15 पर सुनिएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। पर प्रसारित होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। इसके अंतर्गत आज की बात में पारिवारिक संबंधों को वरीयता दें, साथ ही डॉक्टर राज नारायण पांडे की वार्ता होगी वैश्विक ऊर्जा संकट भारत के समक्ष चुनौती। 9:00 आपके संदेश आपके गीत, 9:30 पर सजीव फोन इन हेलो अयोध्या और 1:00 सुनिएगा फेसबुक फरमाइशी कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग 12:30 और 2:00 आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।

दोपहर 2:30 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगना। इसके अंतर्गत चर्चा होगी चौधरी चरण सिंह पुण्यतिथि और बचाएं ईंधन, करें सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग। साथ ही लोकगीत, घरेलू सुझाव के अलावा अंजलि सिंह की वार्ता होगी गर्मी व लू से बचने में खाद्य व पेय पदार्थों की भूमिका। शाम 5:00 युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत चर्चा का विषय होगा संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और मिशन लाइफ, सतत खाद्य प्रणाली अपनाएं। साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्ष पर रेडियो श्रोता रोहित यादव से बातचीत के अलावा शब्दावली और स्थान में जानिएगा मैड्रिड के बारे में। शाम 5:30 पर लोक संगीत, 6:10 पर शाम सुहानी और 6:30 का समय होगा कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। कार्यक्रम कृषि जगत का समय होगा 6:45 पर। इसके अंतर्गत चर्चा होगी जल है तो कल है, साथ ही

लोकगीत बाजार भाव मौसम का हाल के अतिरिक्त डॉक्टर विक्रमजीत सिंह से भेंटवार्ता होगी। कंकोड़ा और विंडबीन की वैज्ञानिक खेती और लाभ। रात्रि 8:15 पर गीत गुंजन, 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ, कहा किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन, कहा शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार, प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान, लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह ने कहा कि दो दिन का यह सम्मेलन खरीफ कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सहायक होगा।
4: देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं इस वर्ष में। इस साल कुल मिलाकर जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3,765.63 टन अनुमानित है, जो पिछले साल से

0: 188 लाख टन अधिक है।
1: सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा और समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर आवासीय एवं कार्य सुविधाएं आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस लाइन, थाना बैरक, अग्निशमन केंद्र के कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को सहयोग उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने आज लखनऊ में Zone 4 के भैंसोरा क्षेत्र में अत्याधुनिक फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह प्लांट प्रतिदिन 150 टन कूड़े के निस्तारण की क्षमता रखता है। इस दौरान महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए AK शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है।
3: लखनऊ ऑलरेडी शिवरी में और भेला में 20 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके देश में एक चुनिंदा शहर बना है। लखनऊ ऑलरेडी स्वच्छता सर्वेक्षण में 30वें स्थान पर आकर के देश में अपना नाम बना चुका है। अब ये 51 ट्रांसफर स्टेशन जो इस तरह से बन रहे हैं उनकी वजह से लखनऊ नगर में कहीं भी कूड़े का बड़ा ढेर जो है खुले में नहीं दिखेगा। सब कुछ कॉम्पैक्टिंग होगी, सब कुछ बंद गाड़ियों में ट्रांसफर होगा।
1: इस अवसर पर महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य लखनऊ को देश के सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में शामिल करना है।
4: आज लखनऊ स्वच्छता में एक कदम और आगे बढ़ा है। भरवारा मल्लौर वार्ड में भी हमने ट्रांसफर स्टेशन लगाया है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में हमारे कम्प्लीट 51 ट्रांसफर स्टेशन बन जाएंगे, 24 पूरे हो गए और लखनऊ में कहीं भी कूड़ा ना दिखे इसका मेरा पूरा प्रयास है।
1: अयोध्या में कल 29 मई को राम मंदिर परिसर में परकोटे में बने मां भगवती मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और प्रमुख संत साध्वी रितंभरा ध्वज फहराएंगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
5: पहली बार राम मंदिर परिसर में 3000 से अधिक मातृ शक्तियों का एक साथ समागम होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु समारोह में शामिल होंगी। सभी आमंत्रित मेहमानों को QR

0: बार कोड युक्त प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं और स्कैनिंग के बाद ही मंदिर परिसर में प्रवेश मिलेगा। शाम 6 बजे माँ भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी रितंबरा और साध्वी निरंजन ज्योति ध्वजारोहण करेंगी। कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में उत्साह का माहौल है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश भर में अकीदत और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। राजधानी लखनऊ में सुन्नी समुदाय के लोग ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद में नमाज में शामिल हुए। वहीं शिया समुदाय ने आसिफी मस्जिद में नमाज अदा की। नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ में ईद उल अजहा का पर्व आज सुबह नमाज अदा करने के साथ शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर की विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। ऐशबाग ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फरंगी महली और अन्य मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुसलमानों से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की अपील की है। मौलाना खालिद ने बताया कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की है। त्यौहार के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नगर निगम ने भी 30 मई तक पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या, बाराबंकी, पीलीभीत, श्रावस्ती, प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर और कौशाम्बी सहित विभिन्न जनपदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में नमाज अदा की गई। आगरा में ताजमहल परिसर स्थित मस्जिद में नमाज के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। ईद उल अजहा के अवसर पर आज देशी विदेशी सैलानियों के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। प्रदेशवासियों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर आज से 31 मई के बीच आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान है। कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं 1 जून से मौसम के शुष्क होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की आजीविका को बेहतर और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का किया जा रहा है उपयोग। अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई नमाज। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर 31 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाएं चलने का जताया अनुमान। लोगों को सतर्कता बरतने की दी सलाह। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं मोहरा फिल्म का गाना। पंकज उदास और साधना सरगम की आवाजों में, गीत लिखा इंदिवर ने, संगीत विजू शाह का है।

0: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज टीवी और फिल्म अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल से यूनुस खान की बातचीत आपको सुनवा रहे हैं प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ है अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल। प्रकृति, बहुत बहुत स्वागत है।

0: भारती के स्टूडियो में।
1: थैंक यू।
0: ये बताइए कहाँ की रहने वाली है, परवरिश कहाँ पर हुई है?
1: मैं वैसे गढ़वाल की हूँ, उत्तराखंड, और जन्म मेरा दिल्ली में हुआ था, लेकिन मैं बहुत जगह रही हूँ, जैसे गुजरात भी रही हूँ, चंडीगढ़ भी रही हूँ, दिल्ली भी रही हूँ, बॉम्बे भी, उत्तराखंड भी, मतलब बहुत जगह रही हूँ मैं।
0: अच्छा, कितना लगाव है गढ़वाल की वादियों से?
1: बहुत ही ज्यादा, पहाड़ को कभी भूल नहीं सकता, ऐसा लगता है कि पहाड़ में ही वापस बस जाए, लेकिन इंडस्ट्री यहाँ पे है, सिंस तो बॉम्बे में ही रहना पड़ रहा है।
0: अच्छा, ये बताइए, ये जो अभिनय की यात्रा है, अभिनय का शौक है, ये कहाँ से शुरू हुआ था आपका?
1: मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे बहुत नौटंकी होते हैं, तो मैं शीशे में देख के बड़े नाटक करती थी।
0: ये किस उम्र से शुरू किया था?
1: ये पता नहीं, काफी बचपन से शुरू हो गया था। तो एक मुझे ऑफर आया, डीडी नेशनल का ही आया, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री था, गुजराती डॉक्यूमेंट्री, तो मम्मी ने बोला कर लो ट्राई, अगर तुम्हें करना है तो।
0: तब आप कितने बरस की थी?
1: मैं तब 15 साल की थी।
0: अच्छा,
1: तो मैंने ट्राई कर लिया, उसके बाद से फिर शॉर्ट फिल्म्स वगैरह सब शुरू ही हो गया, फिर म्यूजिक वीडियोस।
0: अच्छा,
1: हाँ।
0: तो पहली जो एक्टिंग थी वो की आपने 15 वर्ष की उम्र में एक डॉक्यूमेंट्री के लिए।
1: हाँ,
0: जब कैमरे का सामना किया तब क्या हो रहा था?
1: तब दिल की धड़कनें बड़ी हुई थी, अभी भी है।
0: जब परफॉर्म करना होता है या किसी अनजान एक्सपीरियंस से गुजरना होता है तो दिल की धड़कनें तो बड़ी ही होती है। स्कूल के जमाने से भी चल रही थी एक्टिंग, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्री के पहले से भी?
1: हाँ, मतलब थिएटर होता था हमारे स्कूल में, प्लेज होते थे, ड्रामा क्लासेस तो चलता ही रहता था, ड्रामा तो कभी लड़कियों का वैसे बंद नहीं होता है। हमने सोचा इसे प्रोफेशनल किया जाए फिर।
0: बिल्कुल सही है। पढ़ाई और एक्टिंग का बैलेंस किस तरह से होता था?
1: पहले तो मतलब इतना काम नहीं होता था, तो मैंने कर लिया, मतलब स्कूल इतना जाती नहीं थी मैं, साइड बाय साइड जॉब भी कर रही थी एक पार्ट टाइम, तो मैनेज हो गया, घर पे पढ़ लेते थे, मम्मी भी प्रिंसिपल रही थी तो मम्मी भी पढ़ा देती थी हमें। और कॉलेज में थोड़ा सा दिक्कत हुई, कॉलेज में शूट भी है, एग्जाम्स भी है, बहुत मुश्किल हुई, लेकिन कर लिया,
0: एडजस्ट हो गई सारी चीजें।
1: हो गई।
0: मुझे बताइए कि आपने थिएटर की दुनिया में क्या क्या किया है और कदम कब रखे थे रंगमंच की दुनिया में?
1: थिएटर मैंने 2012 में शुरू किया था, चंडीगढ़ में मैंने थिएटर स्टार्ट किया था, कुछ टाइम वहाँ किया थिएटर, 3 साल वहाँ किया और 2 साल मैंने दिल्ली में किया।
0: अच्छा, हाँ। तो जब थिएटर में शुरुआत हुई, चंडीगढ़ में रंगमंच की अच्छी परंपरा है, वहाँ स्कूल भी है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में, मुझे वहाँ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए, कौन से नाटक किए, किन लोगों के साथ किए थे?
1: मेरा सबसे पहला नाटक रामलीला था एक, तो उसमें मुझे कुछ पता ही नहीं था ये राम लक्ष्मण के बारे में, मैंने कुछ सुना ही नहीं, और मैंने सोचा रामलीला मतलब आज के जमाने में कौन रामलीला करता है, और वो 8-9 दिन चला, और हमारा जो सेक्टर का ग्रुप था वो फर्स्ट आता था हमेशा की तरह, और इस बार भी आया ही था, तो मेरा शबरी के बचपन का रोल था, तो बहुत सारे प्ले किया हमने।
0: अच्छा,
1: हाँ।
0: और इसके अलावा क्या किया?
1: इसके अलावा तो मैं फिर पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में किया, फिर मैंने एक पंजाबी फिल्म भी करी चंडीगढ़ में रह के, फिर मैं हिंदी फिल्म्स की तरफ आने लगी, मैंने हिंदी फिल्म भी करी दिल्ली में आके।
0: अच्छा, पंजाबी फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा था, वो फिल्म कौन सी थी और उसको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला था?
1: उसमें मेरा एक कैरेक्टर था छोटा सा, मुंडिया तो बच के रही फिल्म का नाम है, और ज्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं था, छोटा ही था, लेकिन मजा आया, मुझे पंजाबी बोलनी आती नहीं थी, इस तरीके से मैंने पंजाबी भी सीख ली।
0: ओ, तो पंजाबी बोलनी नहीं आती थी लेकिन पंजाबी फिल्म की थी और इसलिए पंजाबी सीखने मिल गई। मुंबई कब आना हुआ था?
1: मुंबई वैसे तो मैं पहले 4 साल 1 महीना रही, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, नहीं हो पाया मुझसे, मैं कुछ टाइम मैंने कुछ थोड़ा सा काम किया फिर वापस चली गई मैं, फिर मैं अभी 2 साल पहले आई हूँ और हो गई, मैं अब तो सेटल हो गई हूँ, मैंने काफी काम कर लिया, मैंने बहुत सारे एड्स कर लिए, रियलिटी शो कर लिए और टीवी मतलब फिल्म वगैरह, यहाँ पे मैंने एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म भी करी, उसके बारे में ज्यादा बता नहीं सकती।
0: ये बताइए कि मुंबई का एक्सपीरियंस किस तरह का है, क्योंकि जब यहाँ कोई स्ट्रगल करने के लिए आता है तो उसे तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मुझे ऐसा लगता है कि जो मुंबई में आके रह लिया 5-6 महीने, अगर वो खुद से रह लिया तो मतलब वो पक्का बन गया, बस अब यहाँ रह लिए तो दुनिया के किसी भी कोने में रह लेंगे।
0: तो मुंबई में जो पहला काम आपने सेकंड दौरे में, मतलब पहली बार तो आप लौट गई थी, वो क्या किया था?
1: मैंने टीवी में किया था, मैंने एक जजमेंट किया, मैंने सीरियल, वो भी उसमें भी कुछ टर्म का मेरा रोल है, और मोबाइल फोन का एड्स का, ये सब बहुत किया।
0: टेलीविजन के लिए और फिल्मों के लिए काम करने में किस तरह का फर्क है एक एक्टर के लिए?
1: टेलीविजन में ये होता है कि आपको एक कैरेक्टर मिला है तो वही आपका चलता रहेगा, वही आप करते रहते, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बोरियत ऐसे हो जाता है वही करते हुए। फिल्म में क्या होता है कि आपको बहुत वैरायटीज है, कि 1 महीने बाद अब आपको दूसरा काम मिल रहा है तो आपको एकदम से ही दूसरा रोल मिल जाएगा, थोड़ा प्ले करने को मिलता है फिल्म में, और सीरियल में एक ही चल रहा है वो चलता ही रहता है।
0: अपने आप को किस तरह से अपने रोल्स के लिए आप तैयार करती हैं, इतनी जरा सी हैं और इतनी बड़ी एक्टिंग की और फिल्मों की दुनिया है?
1: जब हमें ऐसे कोई पता लगता है कि हमें एक कैरेक्टर आ रहा है तो हम एक तो उस कैरेक्टर में हमें रहना है, अपने आप

0: आइसोलेट कर देना पड़ता है पूरी दुनिया से, क्योंकि फिर हम लोग थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फिर, और ऐसा होता है कि हम पूरे एकदम तैयार हो रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, पूरा दिन आप उसी कैरेक्टर में हो कि वो कैरेक्टर हल्का सा छूट ना जाए और अपनी हम बेस्ट परफॉर्मेंस दे कैमरे के आगे।
1: घर वालों का कितना रोल है आपको यहाँ तक लाने में?
0: घर वालों का तो पूरा रोल है, पूरा सपोर्ट है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी नहीं होती तो शायद मैं ट्राई भी नहीं करती, फिर मैं एक नॉर्मल एक जॉब कर रही होती, क्योंकि मम्मी ने मुझे पुश किया कि तुझे करना चाहिए, तेरे में है वो बात, तू कर सकती है, तो फिर मुझे तब हिम्मत आई कि हाँ।
1: बिल्कुल। अभी मुझे बताइए कि वो कौन कौन से सीरियल्स हैं जिन्होंने थोड़ा आपको नाम दिया, आपको पहचान दी है?
0: एक तो ये मैंने किया था स्वाभिमान किया मैंने, और मैंने जो रियलिटी शोज किए फिर बिंदास का भी किया था और कुछ एक दो और भी हैं, तो उनसे मुझे काफी वो हुआ, और एक एड था मैंने किया था फोन का, तो उससे भी मुझे काफी हुआ।
1: क्या अब जिस तरह की फिल्में आ रही हैं और जिस तरह के सीरियल्स आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सब्जेक्ट्स के मामले में और अपॉर्चुनिटीज के मामले में पहले से बहुत ज्यादा फर्क आ गया है और अब मामला थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड हो गया है?
0: पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले इतनी लोगों की एंट्री नहीं होती थी फ्रेशर्स की, अब इतना सब कुछ बन रहा है, मतलब फटाफट, मतलब हमें रोज कास्टिंग के लिए कुछ ना कुछ आ जाता है कि कभी ये कास्टिंग करे कभी वो कास्टिंग करे, और अच्छा भी है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इतने सारे लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग आज भी बॉम्बे में भटक रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, और टैलेंट इतना है कि जिन्हें काम नहीं मिल रहा, और मिलना चाहिए उनको।
1: एक लड़की के लिए मुंबई में स्ट्रगल करना कितना मुश्किल काम होता है और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है?
0: ये तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। एक लड़की जब बॉम्बे आती है तो सब लोग सोचते हैं कि अपना खर्चा कैसे चलाएगी, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है गंध, ये कहाँ जा रही है रात को, क्या हो रहा है, लेकिन अब ऑफ स्क्रीन किसी को मेहनत दिखती नहीं है।
1: यही मैं कह रहा हूँ कि किस तरह की मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ता है,
0: वही सबके सामने, आप कितने भी मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, सबके सामने आपको नॉर्मल दिखाना है कि आप नॉर्मल हो, आप खुश हो, आपको बहुत काम मिल रहा है, अगर किसी को नहीं भी मिल रहा, हम दिखा नहीं सकते हैं लोगों को, तो बहुत शो ऑफ भी है इस इंडस्ट्री में, करना भी पड़ता है ताकि काम भी मिलते रहना चाहिए, तो नॉर्मल ही रहो सबके सामने, हंसते खेलते रहो
1: जी। और आपको ये बताइए, शूटिंग से जुड़ी हुई कोई बहुत खास बात जो आप हमारे साथ बांटना चाहें, जो आपकी जिंदगी की यादगार बात रही हो अब तक के आपके अपने एक्सपीरियंस से?
0: अभी तक तो मेरा भी रिसेंटली हुआ था, ये जब मैं स्वाभिमान कर रही थी तो मेरे कैट का ना एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, तो उस दिन मैं शूट पे थी और वो सीन चल रहा था कि जब बहू घर पे आ रही है और मैं थाली लेके, मेरा कामवाली का रोल था, तो मैं थाली लेके जा रही हूँ उसका स्वागत करने के लिए, उसमें दिया वगैरह सब रखा हुआ है और खुशी का माहौल है, मैं रो रही हूँ, मैं लिटरली आंसू रो रही हूँ, वो खुशी का माहौल है और मैं रोते रोते मेरा पैर ऐसे फिसला और वो प्लेट गिरी और वहां पे कारपेट पे वो आग लग गई।
1: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ।
0: और मैं बैठे बैठे रो भी रही हूँ और हंस भी रही हूँ, बहुत फनी भी लगा था और थोड़ा डिप्रेसिंग भी था, मतलब अजीब सही था, ये सबसे यादगार था एक्चुअली। मैं
1: ये बताइए कि सीनियर्स का बर्ताव नए एक्टर्स को लेकर किस तरह का होता है?
0: अच्छा होता है, अगर एक एक्टर अच्छा है तो सीनियर्स बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, सिखाते हैं, बल्कि जिन जिन के साथ मैंने काम किया, मैं पहले डरी हुई थी, थोड़े बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे मेरे सामने और मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, तो वो लोग जब थोड़ा सा समझाते थे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, मैंने देखा है।
1: सीख कर आना कितना मायने रखता है?
0: बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको थिएटर करना चाहिए फिर आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, अगर आपने थिएटर नहीं किया तो आप टेक पे टेक लेते जाओगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर करके ही आपको आगे सिनेमा में आना चाहिए।
1: अब मुझे ये बताइए कि आपने अपने लिए क्या सोच रखा है, मतलब क्या गोल्स हैं, टेलीविजन ज्यादा करना है, फिल्में करना है, डायरेक्शन करना है?
0: मुझे वैसे फिल्म्स करनी है, आर्ट फिल्म्स करनी है।
1: आज के जमाने में एक्टिंग कितना फ्लरिशिंग करियर है या इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल है?
0: नहीं, फ्लरिशिंग करियर तो बहुत है, अगर आप एक बार चल पड़े, आपकी गाड़ी चल पड़ी तो वो चल पड़ी, पर लेकिन वो चलाने के लिए गाड़ी आपको इतनी मेहनत करनी है, आपका रोज एक आपको जंग लड़नी है, हजारों एक्टर्स में से आप सिलेक्ट होने चाहिए, क्योंकि वहां पे लाखों एक्टर्स हैं जो आपके बराबर हैं और आपके जितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन आपको ये दिखाना है कि आप किसे सबसे हटके हो, तो मतलब ये रोज एक जंग है
1: और इस जंग के लिए आपको रोजाना तैयार होना पड़ता है,
0: रोज बहुत टफ है।
1: ऑस्ट्रेलियन फिल्म आपने की, आपने बताया कि बहुत ज्यादा उसके बारे में आप रिवील नहीं कर सकती, मुझे बताइए कि फॉरेन क्रू के साथ काम करना कितना डिफरेंट था भारत के लोगों की बजाय?
0: मुझे ऐसा लगा कि वो ज्यादा बेटर है। वो बहुत प्रोफेशनल है अपनी चीज को लेके, अगर उन्हें वो चीज करनी है तो वो बहुत प्रोफेशनली करेंगे, यहाँ पे थोड़ा खिचड़ पिचड़ रहता है कि मुझे ज्यादा बेटर लगा उस क्रू के साथ काम करना,
1: उनका काम ज्यादा सिस्टमेटिक आपको लगा?
0: हाँ, प्लस जो उसमें लीड एक्टर्स थे वो लोग भी दे वर गुड टू एवरीबॉडी, मतलब जूनियर एक्टर्स भी अगर वो देख रहे तो उनको भी वो ग्रीट कर रहे हैं, मैंने थोड़ा बॉलीवुड में

0: या जूनियर आर्टिस्ट जो भी होता है बैकग्राउंड में, वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कौन है वो, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ गए, जबकि वो भी एक फिल्म का हिस्सा है, अगर वो नहीं होते तो एक फिल्म नहीं बनती है, मतलब वो बहुत मायने रखते हैं। पर वो हॉलीवुड वाले उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बॉलीवुड वाले मैंने नहीं देखे रिस्पेक्ट करते हुए।
1: और टेलीविजन की दुनिया में?
0: टेलीविजन में भी सबकी इज्जत है।
1: अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे शहरों से स्ट्रगल करने के लिए मुंबई आने को तैयार रहते हैं, और हम जब विविध भारती से एक्टर्स या अलग अलग पर्सनालिटीज के इंटरव्यू सुनवाते हैं तो लोगों को लगता है कि अगर ये लोग मुंबई में कामयाब हुए हैं तो हम भी चांस ले सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने एक्सपीरियंस से आप क्या सलाह देंगी प्रकृति?
0: अगर आप एक साल थिएटर कर लिया आपने तो आप जरूर बॉम्बे में सर्वाइव कर लोगे।
1: यानी रंगमंच का बहुत ठोस अनुभव होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप एक्टिंग की दुनिया में आगे आए तो बेहतर रहेगा। आपको रंगमंच का अनुभव कितना काम आया है, क्योंकि आपने बताया कि आपने चंडीगढ़ में काफी सारा थिएटर किया था, तो यहाँ आकर वो वाली जो तैयारी है वो कितना याद आती है?
0: बॉम्बे में बहुत कॉम्पिटिशन है तो इजिली आपको थिएटर मिलता भी नहीं है, क्योंकि बहुत एक्टर्स फिल्म एक्टर्स भी जो अभी यहाँ पे थिएटर कर रहे हैं, तो आपको पहले यहाँ पे प्रोडक्शन में मिलेगा। और मैंने सोचा था कि यहाँ पे थिएटर आके करूंगी, लेकिन थिएटर में पैसा नहीं है, थिएटर में काम अच्छा है, तो फिर मैंने थिएटर का आइडिया ड्रॉप कर दिया।
1: प्रकृति, ये बताइए कि एक एक्टर के लिए ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है? आप ये मानती हैं कि एक्टिंग जो है वो एक नेचुरल प्रतिभा है, या फिर उसको ट्रेनिंग के जरिए संवारा निखारा जा सकता है, बेटर बनाया जा सकता है?
0: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं, हम सब लोग रोज अपनी लाइफ में एक्टिंग करते हैं रियल लाइफ, लेकिन जब कैमरा आता है तो कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो सामने वाला हमें देख रहा है। लेकिन अगर हमें पता ही ना चले कि कोई हमें देख रहा है तो हम लोग बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेते हैं। तो वी ऑल आर बॉर्न एक्टर्स, लेकिन उसे ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग और शार्प कर सकते हैं। जैसे एक पेंटर होता है, अगर वो रोज पेंटिंग करे तो वो और अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो ऐसे ही एक्टर है, अगर वो रोज एक्टिंग करे तो वो और बेहतर हो सकता है अपनी ट्रेनिंग से।
1: यानी ट्रेनिंग के आज के एक्टिंग की दुनिया में मायने हैं, वो आपको बेटर बना सकती है। अब मुझे ये बताइए कि आज टेलीविजन या फिल्मों में जो रोल्स आपको मिलते हैं अपने करियर के इस स्टेज पर, तो वो रोल किस तरह से आप चुनती हैं, या आपके मन में एक इमेज होती है कि मुझे इस तरह के रोल्स करने हैं, आपने तय कर रखा है कि इस तरह के रोल्स करना चाहती हूँ लेकिन आज उस तरह के सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं?
0: मैं बहुत ऑनेस्टली बताना चाहूंगी, अभी इस टाइम मुझे जो आ रहा है मैं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे भी अभी सर्वाइव करना है बॉम्बे में, मेरे पास कोई ऐसे खजाना नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, तो हमें भी अभी बहुत पैसे चाहिए मेंटेनेंस के लिए, वैसे भी इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा चाहिए, अपने ऊपर ही बहुत खर्चा होता है, तो फिलहाल अभी जो आ रहा है मैं ले रही हूँ, लेकिन आगे जाके मैं बहुत चूजी होने वाली हूँ कि चाहे एक दो साल में एक काम करूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया प्रकृति, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और आपने हमसे बातचीत की, बहुत धन्यवाद।
2: जानी मानी टीवी और फिल्म अभिनेत्री प्रकृति नौटियाल से यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इसी के साथ आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम अब समाप्त।

दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक यादों की परछाइयां। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का चौथा और अंतिम भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।

0: से बात हुई?
1: डैडी घर पे नहीं थे, नीना ये बात पहले से ही जानती थी।
0: तो
1: बस नीना जो चाहती थी उसने पा लिया। हम लोग ऐसे ही मिलते रहे लेकिन डैडी से कभी भी मुलाकात ना हो सकी। फिर नीना ने शादी का जिक्र भी छोड़ दिया। मुझे भी लगा मैं अब उसके लिए कोई खास कशिश नहीं रह गया हूँ। बस जैसे मिले थे वैसे ही अचानक मिलना जुलना बंद हो गया। वैसे कविता का ख्याल है हम दोनों को करीब लाने के लिए नीना ने सेक्रीफाइस की है, लेकिन अपनी उतरन किसी को दे देना दान तो हो सकता है, सेक्रीफाइस नहीं।
0: तो तुम्हें इस आदमी के साथ नीना को देखकर हैरानी क्यों हुई?
1: इसलिए भाई की दौलत की जिसको कमी ना हो, खूबसूरती से प्यार करने वाली औरत आखिर इस किस्म के आदमी से शादी करे तो क्यों?
0: क्या पता उसके लंबे चौड़े अरेंजमेंट में ये आदमी महज एक ढाल हो। और
1: वो लोग इधर ही आ रहे हैं।
2: कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? विकी नीना आई है।
1: हेलो नीना।
2: हेलो विकी, अच्छे तो हो?
1: फाइन थैंक यू।
2: इनसे मिलो, माय हस्बैंड मिस्टर लाल।
1: वेरी प्लीज्ड टू मीट यू मिस्टर लाल। हाउ डू यू डू? वेरी नाइस टू मीट यू मिस्टर लाल।
3: अच्छा भाई अब आप लोग बाहर चलिए, जायदा ने तो पूरा मुशायरा जमा रखा है।
2: हाँ हाँ चलो ना। कभी
1: आइए मिस्टर लाल, शेर सुनकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी मिस्टर लाल। चलिए आइए। नीना कैसी हो?
2: सिर्फ इतनी सी बात पूछने के लिए तुमने मुझे रोका था?
1: यूं ही, मैं जानना चाहता था शादी के बाद तुम कैसा महसूस कर रही हो।
2: शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है क्या?
1: लोग कहते हैं।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगा।
1: बहुत खुश हो?
2: बेहद। कौन किसी को क्या खुशी दे सकता है, खुशी तो अपने मन से होती है। वैसे मिस्टर लाल से मुझे सब कुछ मिल जाता है।
1: सब कुछ?
2: और अगर कहीं कमी रह जाती है तो आंखें बंद करके तुम्हें याद कर लेती। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? छोड़ो, और सुनाओ कीवी से कैसी निभ रही है?
1: कुछ समझ में नहीं आता, कीवी दिन पर दिन शक की और बेहद डोमिनेटिंग होती जा रही है।
2: क्योंकि वो तुम्हें अपना, सिर्फ अपना समझती है।
1: अपना समझने से तो एतबार बढ़ना चाहिए।
2: कोई दूसरा उसकी खुशी में शरीक ना हो, डर भी तो लगा रहता है।
1: जाने क्यों मुझे लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए शायद नहीं बने।
2: तो क्या हुआ, शादी के बाद बन जाओगे?
1: और अगर ना बन सके तो?
2: तो आंखें बंद करके तुम उसके बारे में सोच लेना जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल है कि वो बिल्कुल तुम्हारी अपनी।
1: दूसरे लफ्जों में जिंदगी भर हम एक दूसरे को धोखा देते रहे।
2: मैं इसे अरेंजमेंट कहती हूँ। इस जमाने में जिंदा रहने के लिए एक सूझबूझ के अरेंजमेंट की जरूरत भावनाओं से ज्यादा है। जिस रफ्तार से हम आगे ही आगे बढ़ रहे हैं वहाँ रुककर पीछे देखने वाला इंसान कुचला जाएगा। गुजरा हुआ हर मोमेंट मर चुका है, खत्म हो चुका है। विकी जहाँ खड़े हो उसी को स्टार्ट मानकर नई दौड़ शुरू करो।
1: शायद तुम ठीक कहती।
2: कम से कम मैंने यही किया है और मेरा ख्याल है आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन।
1: लेकिन कीवी
2: बिल्कुल परफेक्ट लड़की दुनिया में कोई है? कीवी में बहुत कुछ है। और फिर मत भूलो कि उसके बाप की क्या पोजीशन है।
1: मुझे उससे क्या लेना देना?
2: कीवी उनकी इकलौती बच्ची है।
1: लेकिन मुझे उसके रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं।
2: ना सही, वो तुमको बेहद चाहती भी तो है। तुम क्या उसे पसंद नहीं करते?
1: ना करता होता तो इतना सभी क्यों?
2: सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसा है तुम उससे भागना क्यों चाहते हो?
1: मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
2: क्योंकि तुम वक्त की रफ्तार के साथ नहीं हो। देखिए वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा।
3: लोगों की कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए तो जरा बाहर आ जाना, सारा प्रोग्राम फीका पड़ रहा है।
1: नहीं नहीं कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। आओ नीना बाहर चले।
2: चलो। अरे भाई मैं तो तुम्हारी ही वकालत कर रही थी कीवी।
3: लेकिन किसी को हमारी परवाह हो तभी तो।
1: कीवी तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती?
3: क्या समझूं, समझने को रखा ही क्या है, खुद ही ऐसी गलती कर रही हूँ, खुद ही इसे भुगतूंगी भी।
2: अरे क्या बात है कीवी?
3: कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
1: कीवी कीवी आखिर हुआ क्या है, तुम ये तो बताओ तुम चाहती क्या हो?
2: बताओ ना कीवी आखिर क्या चाहती हो?
3: तुमसे क्या छुपा है, अब तो सारा जमाना जान चुका है कि मैं क्या चाहती हूँ, किसे चाहती हूँ। लेकिन लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये
1: वो तुम्हें तो वहम हो गया है कि
3: हाँ हाँ मुझे ही वहम हो गया है। और तुम क्यों नहीं डैडी से बात करते हो? मम्मी बार बार मुझसे पूछती है विकी ने प्रपोज किया, विकी कब प्रपोज करेगा, विकी के सहारे कब तक बैठी रहोगी। फ्रेंड्स मिलती है तो किसी भी रिंग को देखकर टोंट करती है कि ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है। तब मेरा जी चाहता है मैं कहीं कूद कर

0: दे दूँ।
1: ओ बीबी, सुनो बीबी, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि तुम्हारे पेरेंट्स को इतनी जल्दी है। मैं खुद बात करना चाहता था, लेकिन लेकिन मैं किसी अच्छे से मौके की तलाश में।
0: मौका मौका मौका, आज से अच्छा मौका क्या हो सकता था, लेकिन तुमने जान बूझ कर देश से आए ताकि चांस अवॉइड कर सको।
1: चलो आज की बात छोड़ो बीबी, मैं जल्दी ही किसी रोज।
0: मैं जानती हूँ वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा।
1: आएगा बीबी, आएगा।
0: आज ही क्यों नहीं?
1: आज बात ये है, वक्त नहीं रहा। देखो 7:30 बज रहे हैं और 8 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है।
0: मैं पहले ही जानती थी तुम जरूर कोई ना कोई बहाना ढूंढ निकालोगे।
1: सुनो तो सही।
0: नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मेरे लिए कौन रुकता है?
1: ओफो, अब तुम ही बताओ नीना।
2: हेलो
3: नीना डार्लिंग, अब इजाजत लो। याद है कुमार के यहाँ डिनर है।
4: यस डार्लिंग, आइए चलें।
0: अच्छा भाई विकी, गुड नाइट।
1: गुड नाइट नीना। गुड नाइट मिस्टर लाल।
3: कभी आइए मिलने।
1: जरूर जरूर। डार्लिंग,
5: तुम डार्लिंग कहते हो तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से उकताए हुए पति पत्नी हैं। मुझे इस लफ्ज से सख्त बनावट की बू आती है।
6: अरे विकी, तुम यहाँ अकेले ही खड़े हो और वो भी अंधेरे में।
1: हाँ यार, तुम ही रोशनी कर दो।
6: अब क्या और रुकने का इरादा है या चलना है?
1: अरे भाई, मुझे तो जाना है, 8 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है।
6: तो फिर चलो ना, 7:30 तो कभी के बज चुके हैं।
4: आओ। हमसे तो आज बात भी नहीं की।
1: कभी इतना बोर करूंगा मैडम कि कान पकड़ लोगी।
4: किसके?
1: अपने और किसके।
7: वेल सेड विकी।
4: चुप करो हार्टबीट।
1: जाहिदा, कीवी कहाँ है?
4: लीजिए, वो हमसे पूछते हैं उनका दर्द दिल कहाँ है।
1: मजाक छोड़ो, मुझे जाना है भाई।
4: गेट पर होगी नीना को सी ऑफ करने के लिए।
6: तो चलो चले। मैं
4: तुम भी जा रहे हो हार्टबीट?
8: तुम कहो तो रुक जाऊं।
4: कहा
6: विकी, गुड नाइट। गुड नाइट, अपनी फ्लाइट अभी लेट है।
7: अच्छी बात है तुम्हारी किस्मत। गुड नाइट।
4: गुड नाइट हैंडसम।
7: गुड नाइट जायदा।
4: जा रहे हो विक्की?
6: अरे भाई इतनी जल्दी?
1: मजबूरी है अंकल, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं बॉम्बे से, 8 बजे फ्लाइट आनी है, एयरपोर्ट उनको रिसीव करने के लिए पहुंचना है।
3: फिर तो जरूर जाओ।
1: अच्छा केवी,
4: थैंक्स फॉर कमिंग।
1: गुड नाइट एवरीबॉडी।
3: गुड नाइट।
1: ये लड़कियां इतनी ना समझ क्यों होती हैं?
0: तारीफ तो तुम क्या करोगे, बस कदर ही कर लो, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी तरह के भूतों का खतरा होता है ना, न मिले तो सूना सूना लगता है, मिल जाए तो ऐसा जादू करते हैं कि घर बार भूल जाता है।
9: गुड
1: इवनिंग सर।
9: गुड इवनिंग विक्रम, हाउ आर यू?
1: वेरी फाइन सर, हाउ वाज योर जर्नी?
9: कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल इंडीड।
1: गाड़ी इधर है सर, आपका सामान?
9: बस यही हैंडबैग है।
1: तो आइए चलें, पहले होटल ही चलें।
9: नो नो, पहले मैं कुमार्स के यहाँ डिनर के लिए जाना चाहूंगा, वहां पार्टी से बातचीत करके ही होटल जाऊंगा, होटल को टेलीफोन वहीं से कर देंगे।
1: राइट सर।
9: विक्रम, तुम्हारी सेल्स की प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम थोड़ी सी मेहनत और करो तो हम सेल्स को और बढ़ा सकते हैं।
1: यस सर, मैं कोशिश करूंगा।
9: आई डोंट बिलीव इन कोशिश विक्रम, ये होना ही चाहिए। मैं कल सुबह तुम्हें इसका तरीका बताऊंगा। विक्रम, तुम्हारा ऑफिस अभी भी कई मामलों में बहुत ढीला है, उसे टाइट करो विक्रम, टाइट, खूब टाइट करो।
1: यस सर।
9: मुझे सुस्त रफ्तारी बिल्कुल पसंद नहीं विक्रम, तुम गाड़ी बहुत स्लो ड्राइव करते हो।
1: सड़कें ठीक नहीं है।
9: सड़कें ठीक न होने से क्या होगा, गाड़ी जल्दी पुरानी हो जाएगी। अगर हिसाब लगाकर सोचो तो तुम समझोगे कि वक्त की कीमत गाड़ी की कीमत से ज्यादा है।
1: यस सर।
9: हमने एक बार एक पूरा डिपार्टमेंट खोला था जिसका काम सिर्फ यही था कि हिसाब लगाए और देखे कि किस काम में कितना वक्त लगता है।
10: फिर जिस रफ्तार से हम आगे ही आगे भाग रहे हैं, वहाँ रुककर पीछे देखने वाला इंसान कुछ ना जाएगा। विकी, जहाँ खड़े हो उसी को स्टार्ट मानकर नई दौड़ शुरू करो, नई दौड़ शुरू।
0: लेकिन सभी घोड़े तो रेस में फंसते
10: हैं और तुम फिर उसके पीछे भागते रहोगे, जीवन भर भागते रहोगे। विक्रम, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा, भागना होगा।
0: मम्मी बार बार मुझसे पूछती है विक्की ने प्रपोज किया,

0: कब प्रपोज करेगा? फीकी के सहारे कब तक बैठी रहोगी? कब तक बैठी रहोगी?
1: मुझे खड़खड़ाते हुए कारखाने की तमन्ना नहीं, मैंने तो छोटे से पुरसुकून घर का सपना देखा है, पुरसुकून घर का सपना।
2: और इसी भावुकता में अंधे होकर हम ये भूल जाते हैं कि प्रेमिका और बीवी दो अलग अलग चीजें हैं। कमला इज हार्डली अ मैच फॉर यू, कमला इज हार्डली अ मैच फॉर
0: यू। ये शोर, ये हंगामा, ये कह कह इतनी भीड़ भाड़ क्या कोई इसलिए पार्टी अरेंज करता है कि खुद अकेले बन का शिकार होकर एक कोने में दुबका पल पल किसी के आने का इंतजार करता रहे, किसी के आने का इंतजार करता रहे।
2: बहुत कुछ है, और मत भूलो कि उसके बाप की क्या पोजीशन है, मत भूलो कि उसके बाप की क्या पोजीशन है।
0: कई तरीके हैं, लेकिन तुम जानबूझकर हटो। देखो कोई आया है, देखो कोई आया है।
3: अरे ये क्या हुआ विक्रम, तुम रुक क्यों गए?
4: सामने ट्रैफिक लाइट में स्टॉप सिग्नल है।
3: ओ देखा, यह भी वक्त के गलत इस्तेमाल की बात है। अगर इंसान सही वक्त पर स्टार्ट करे तो तमाम ट्रैफिक लाइट्स ठीक मिले।
4: चलो। यस सर।
3: और अब तेज चलो, फास्टर विक्रम, फास्टर।
4: यस सर।
1: विक्रम, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। ये वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारे साथ नहीं लुढ़केगा, तुम्हें उसके साथ भागना होगा, भागना होगा। मम्मी बार बार मुझसे पूछती है, विक्की ने प्रपोज किया, विक्की कब प्रपोज करेगा, विक्की के सहारे कब तक बैठी रहोगी, कब तक बैठी रहोगी?
3: फास्टर विक्रम, आई से फास्टर, फास्टर। क्या हुआ विक्रम, तुम अचानक रुक क्यों गए? तुमने तो गाड़ी भी बंद कर दी।
4: यस सर।
3: अरे क्या हुआ, तुम परेशान से दिखाई देते हो।
4: सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं शादी करवा रहा
3: हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ?
4: कविता।
3: कविता
4: स्ट्रॉन्ग टायर्स वाले मिस्टर गिडवानी की लड़की।
3: ओह स्ट्रॉन्ग टायर्स, गुड गुड, वेरी गुड मैच विक्रम, कंग्रेचुलेशन।
4: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: गाड़ी फिर से स्टार्ट करो वरना देर हो जाएगी।
4: यस सर।

0: यादों की परछाइयां। इस नाटक का अभी आपने चौथा और अंतिम भाग सुना। लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीनानाथ। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती PM सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705221।
1: बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। दरिया जहां समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। जी हाँ, हमारा आज का गीत गुंजन समर्पित है हिंदुस्तान के अजीम शायर बशीर बद्र पर।

जी हाँ दोस्तों, शायरी की दुनिया ने आज अपना एक और सितारा खो दिया। अजीम शायर बशीर बद्र नहीं रहे। 91 बरस की उम्र में उन्होंने भोपाल में अपनी आखिरी सांस ली। वो पिछले कुछ समय से डिमोशिया से जूझ रहे थे। उनके जाने से साहित्य जगत शोक की लहर में है। बशीर बद्र ने कई दशकों तक मुशायरों में हिस्सा लिया और अपनी अलग तरह की शायरी और लफ्जों की वजह से लोग

गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं शोभित द्विवेदी के साथ आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और आज हमारा कार्यक्रम समर्पित है हिंदुस्तान के अजीम शायर बशीर बद्र पर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बशीर बद्र ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और PhD पूरी की। बाद में वे इसी विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर भी रहे। बशीर बद्र ने अपनी सरल रूमानी और असरदार गजलों के लिए खास पहचान बनाई।

मेरी हंसी से उदासी के फूल खिलते हैं, मेरी हंसी से उदासी के फूल खिलते हैं, मैं सबके साथ हूँ लेकिन जुदा सा लगता हूँ। उर्दू अदब की रूह में समाये बशीर बद्र तकरीबन 14 बरस डिमेंशिया की गिरफ्त में रहे, जिससे उनकी याददाश्त कमजोर होती चली गई, मगर उनके शेर आज भी हमारे दिलों में धड़कते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं शोभित द्विवेदी के साथ आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। दोस्तों, बशीर बद्र की शायरी का सबसे खास पहलू यह है कि उन्होंने गजल को आसान लफ्जों में ढाला। उनकी शायरी ना तो अरबी फारसी के भारी भरकम लफ्जों में जकड़ी हुई है और ना ही रवायतों की गुलाम। उन्होंने नए लफ्जों को गजल में जगह दी, नए तजुर्बे किए और गजल को एक नया आयाम दिया।

जिंदगी की आम बातों को बेहद खूबसूरती और सलीके से अपनी गजलों में कह जाना बशीर बद्र साहब की खासियत थी। उन्होंने उर्दू गजल को एक नया लहजा दिया। यही वजह है कि उन्होंने श्रोता और पाठकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। साहित्य और नाट्य अकेडमी में किए गए योगदानों के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, दरिया जहां समंदर से मिला दरिया नहीं रहता।

आज बशीर बद्र हमारे बीच से चले गए हैं, मगर उनकी शायरी, उनके किस्से, उनका पढ़ने का अंदाज और उनका मुस्कुराते हुए और हाथ जोड़कर शायरी बोलना सब उनके साथ चला गया, मगर उनके शेर आज भी हमारे साथ हैं। दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन खत्म करेंगे बशीर बद्र के इस शेर के साथ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को इस प्रोग्राम से। आप बने रहिए आकाशवाणी अयोध्या के साथ अब से लेकर रात 11:10 तक, और 9:30 पर सुनना ना भूलिए सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात 9:00 सुनिएगा न्यूज एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और 2 भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों

0: की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्तागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3 करोड़ 91 लाख घरों को मंजूरी दी और उनमें

0: 3.5 करोड़ से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिलाकर तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद विचार विमर्श आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक

0: दिखाई देती है।
1: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
0: जी हाँ, ऐसे ही कालजयी अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
1: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
2: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
3: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूरी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
2: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मीहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिले गजल। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
3: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
2: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
3: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 90-44-20-70-70।
0: जी हाँ, रात्रि के 9:30 हो चुके हैं और शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा शो सजीव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या। स्टूडियो में आपके साथ मैं हूँ शोभित द्विवेदी। उठाइए फोन और डायल कीजिए वही पुराना जाना पहचाना नंबर 73-76-40-90। जी हाँ, इसे मिलाते ही आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ और सुनेंगे अपनी ही पसंद के नगमे, होंगी ढेर सारी बातें। तो प्रोग्राम शुरू होते ही हमारे टेलीफोन की घंटियां बजने लगी हैं। आइए देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो।
4: हेलो
0: जी, नाम बताइए।
4: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, नाम बताइए।
4: जी हमारा नाम दिव्यांशु है, हमने अयोध्या से बनके गांव से फोन किया है।
0: बनके गांव से फोन किया है?
4: यस सर।
0: तो बनके गांव के क्या हालचाल है?
4: जी सर, हालचाल बढ़िया है। आज तो मौसम थोड़ा सही था, बाकी गर्मी

0: बहुत ज्यादा हो रही है इस समय।
1: हाँ, आज तो मौसम कुछ है राहत ना?
0: जी सर।
1: तो दिव्यांशु क्या करते हो?
0: जी वैसे सर हम बाल काटते हैं। जी सर।
1: अच्छा, दुकान है आपकी?
0: जी सर।
1: कहाँ पे काटते हैं?
0: जी अपने हनुमत नगर इटौरा चौराहे पर।
1: इटौरा चौराहे पे काटते हैं?
0: जी सर।
1: तो इटौरा चौराहे वालों काटते हैं कि और भी जो बाहर से आते हैं उन सब का काट देते हैं?
0: नहीं, जो आएगा सर सबका सेवा हम लोग करते हैं।
1: सब की काट देते हैं?
0: जी सर।
1: बड़ा बच के रहना पड़ेगा दिव्यांशु।
0: यस सर।
1: और बताओ क्या हाल चाल बा?
0: बढ़िया बा सर।
1: बढ़िया बा। गाना कौन सा सुनबो
0: सर? रमैया बस्ता भैया फिल्म का गाना सुनना है हमको। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा।

0: काटते हैं
1: जी सर।
0: तो इटौरा चौराहे वालों को काटते हैं कि और भी जो बाहर से आते हैं उन सबका काट देते हैं?
1: नहीं, जो आएगा सर सबका सेवा हम लोग करते हैं।
0: सबकी काट देते हैं
1: जी सर।
0: बड़ा बच के रहना पड़ेगा दिव्यांशु।
1: यस सर।
0: यस सर। और बताओ क्या हाल चाल बा?
1: बढ़िया बा सर।
0: बढ़िया बा। गाना कौन सा सुनबो
1: सर? रमैया बस्ता भैया फिल्म का गाना सुनना है हमको, जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा।
0: तो प्रोग्राम सुनते हो आकाशवाणी अयोध्या?
1: जी सर, रोज शाम को दुकान से आने के बाद डेली सुनते हैं।
0: डेली सुनते हैं।
1: यस सर।
0: चलिए गाना
1: सर, बहुत दिनों से कॉल लगा रहे थे लेकिन आज पहली बार लगा है हमारा कॉल।
0: पहली बार कॉल यहाँ लगा है या बहुत दिनों बाद कॉल लगा है?
1: नहीं सर, पहली बार लगा है और बाकी ट्राई कर रहे थे आज 15-20 दिनों से।
0: लियो बताओ, पहली बार आज आपको कॉल लगा है? वो भी पहली ही कॉल आपकी लग गई।
1: यस सर।
0: हमें लगता है आज आप ज्यादा काट दिए हैं।
1: Yes,
0: बाल बाल बाल बाल।
1: यस सर।
0: है कि नहीं? चलिए दिव्यांशु गाना सुना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर।
1: जी सर।
0: रमैया वस्ता भैया का धन्यवाद।
1: नमस्ते।

0: आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन है। हेलो
1: जी सर, नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए।
1: सर मुन्ना फर्मा वाले सवाल से बोल रहे सर।
0: मुन्ना
1: फर्मा वाले सर।
0: फर्मा वाले
1: जी सर, ये घर जो बनता है उसका फर्मा वाले सर।
0: हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं, वो फर्मा हमने देखा हुआ है। तो कहाँ पे मुन्ना, कहाँ से फोन लगाया है?
1: सर ये सोहावल।
0: सोहावल से? तो सोहावल में ही बनाते हैं आप?
1: जी सर, जी सर, टोल ब्रिज के पास ही है।
0: तो और बताइए, हमारे प्रोग्राम सुनते हैं आप, कैसे लगते हैं?
1: बराबर बराबर आपका प्रोग्राम सुनते हैं सर।
0: तो मुन्ना, और गाना कौन सा आज जी बताइए?
1: सर जी सर, तुमको ना भूल पाएंगे, ईद मुबारक ईद मुबारक, तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म का ईद मुबारक गाना।
0: ठीक है मुन्ना, गाना सुनवा रहे हैं, और कुछ कहना चाहते हैं?
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत दिन से लगा रहे थे, आज लग गया था, बहुत दस्त लगा रहे थे।
0: इससे पहले कब लगा था मुन्ना?
1: सर लगा सर 20-25 दिन पहले लगा था। या तो बहुत पहले सुनते थे जब आते थे, क्या नाम अमरजीत सर थे और दोस्त दीपक सर, हमारा गाना

0: आता था, मनमोहन आता था सर कभी कभी,
1: चिट्ठी आती थी पहले, पोस्टकार्ड आता था।
0: जी सर, जी सर, जी सर, पोस्टकार्ड पोस्टकार्ड।
1: तो अब तो सब डिजिटल हो गया है।
0: अरे वाकई आप सब सुनाते हैं सर, बिल्कुल सो जाता है
1: नहीं बिल्कुल मुन्ना। तो बहरहाल आप भी गाना अच्छा सुन रहे हैं और सभी सुनने वालों को भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई मुन्ना की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी।
0: थैंक यू सर, आपको ईद मुबारक।
1: चलिए धन्यवाद मुन्ना, गाना सुनवाते हैं आपकी पसंद का।
0: थैंक यू।

0: जी हाँ, नंबर हमारा वही है, जाना पहचाना, 7376-8090। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए, कहाँ से फोन लगाया है?
1: सर, देशराज बोल रहे हैं, हाजापुर फैजाबाद।
0: देशराज
1: जी जी,
0: क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल बढ़िया सर।
0: बढ़िया है, तो क्या करते हैं देशराज भाई?
1: हम तो एक पुराना काम करते हैं, सहनाई वादक है।
0: सहनाई वादक है, सहनाई बजाते हैं।
1: हाँ जी,
0: तो आज
1: शादी ब्याह में बुकिंग लेते हैं।
0: अच्छा, तो इस समय तो शादी ब्याह का मौसम नहीं है कि चल रहा है? सन्नाटा हो गया। तो गाना कौन सा सुनेंगे आज? चलिए, गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हमारी। आज देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़ चुके हैं लाइन पर। हेलो,
1: हाँ सर नमस्ते
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी जी सर, हमारा नाम हरि भजन है।
0: हरि भजन
1: जी,
0: कहाँ से फोन मिलाया है
1: सर? हमें शहादतगंज हनुमानगढ़ी।
0: शहादतगंज से, हनुमानगढ़ी से, क्या करते हैं हरि भजन?
1: सर मतलब हनुमानगढ़ी पर कीर्तन होता है, सीताराम होता है ना।
0: हाँ हाँ हाँ
1: जी।
0: अच्छा, कीर्तन वगैरह करते हैं आप
1: जी?
0: तो रेडियो सुनते हैं?
1: हाँ, आवाज नहीं सुनने को मिल रही थी तो हमने कहा फोन लगा दे।
0: जी
1: आपकी आवाज नहीं सुनने को मिल रहा था, हमने फोन लगा दिया।
0: अच्छा, हमारी आवाज सुनने को नहीं मिल रही थी।
1: जी जी।
0: अरे रेडियो खोलते, हाँ रेडियो खोलते सुन लेते
1: सर। आप लोग को बहुत अच्छा आवाज लगता है।
0: क्या बात कर रहे हैं
1: जी? जी सही कह रहे हैं सर।
0: नहीं बिल्कुल, हम मान रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं।
1: हाँ सर,
0: हम मान रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं।
1: हाँ सर।
0: तो हरि भजन कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: सर ये हमारे दोस्त से बात कर लीजिए।
0: दोस्त कहिए कि वो फोन मिलावे पहले अपना खुद। हरि भजन नमस्कार, नाम बताइए जल्दी से।
2: सुनील पाल बोल रहे हैं हनुमानगढ़ी से।
0: जी
2: सर, एक गाना सुनना है हमको।
0: हाँ,
2: आंदोलन मूवी है।
0: तो ये आप फोन मिलाए हो तो ये तो हरि भजन के फोन पे आप गाना सुन रहे हैं।
2: वो नहीं बता पाए, हम बता दे रहे हैं।
0: वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं?
2: वो कह रहे तुम ही बता दो गाना।
0: कह रहे तुम ही बता दो गाना।
2: तो आंदोलन आंदोलन पिक्चर में गाना है।
0: हाँ।
2: बदल गई ये दुनिया, बदल गया जमाना, ऐसे कुछ गाना है सर वो।
0: अच्छा

0: तो ये पसंद
1: तो कई बार सुनेगा ना, हमें भी नहीं पता था।
0: हाँ
1: मतलब अगर हो तो सुना दीजिए, तो फिर
0: तो कौन सा सुना दें बताइए, यही वाला सुना दें?
1: बदल गई है दुनिया, बदल गया जमाना, एक गाना है ना उसमें।
0: अरे हम समझ गए, बताइए हरिभजन कहाँ चले गए? कहा हरिभजन जी, पूरी मंडली से बात करा दे वो कहा आज?
2: अरे नहीं सर, यहाँ तो हम लोग बहुत पूरी मंडली तो है क्या, जैसे विकलांग है, मतलब हम लोग विकलांग आदमी पूरे, मतलब यहाँ 12 आदमी पूरे हैं विकलांग।
0: पूरे 12 आदमी हैं
2: जी सर,
0: एक को कम नहीं है?
2: नहीं सर।
0: अच्छा चलिए फिर गाना सुन लीजिए आंदोलन फिल्म का।
2: हाँ तो ये जो गाना बताए ये गाना चलाइए सर ना।
0: अरे तो हम मान गए आपकी बात, जो गाना बताए वही गाना चलाएंगे। रखे फोन
2: आप।
0: चलिए धन्यवाद कॉल करने के लिए, गाना सुनिए।
2: धन्यवाद सर।

0: लाइव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आइए देखते हैं हमारे साथी कौन है नए। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए।
1: फूलों की कलियां आपकी मुस्कान बने, सूरज की किरणें आपकी शान बने, गमों से न हो कोई भी रिश्ता, सिर्फ खुशियां ही आपकी पहचान बने।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या नाम बताइए अपना जनाब?
1: मैं मोहम्मद रफीक मंसूरी बोल रहा हूँ, पालदा नाका इंदौर से।
0: इंदौर से रफीक भाई, क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया सर, और आपको तो एक ही बहुत बहुत मुबारकबाद और तमाम सुनने वालों को।
0: जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और सभी सुनने वालों को भी। तो कैसा मना त्योहार आज?
1: जी बढ़िया मना सर, एक नंबर।
0: बढ़िया मना, एक नंबर।
1: जी आपको भी मिस किया हमने।
0: हाँ
1: मिस किया आप लोगों को।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रफीक भाई ये बताइए, हेलो
1: जी सुखिए।
0: हाँ हमने कहा कौन कौन सुन रहा है आपको इस समय?
1: इस समय मेरे अम्मी भी है घर में और मेरी भाभी भी है घर में।
0: सब लोग आपको सुन रहे हैं?
1: हाँ हाँ सुन रहे हैं।
0: गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: ये ईद का ही गाना है, फिल्म का नाम है तीसरी आंख, और गाने का बोल है ईद के दिन गले मिल ले राजा।
0: ईद के दिन गले

0: दोस्तों लगातार हमारे चाहने वाले हमें कॉल कर रहे हैं, तो आप भी उठाइए फोन और डायल कीजिए 7376804090। हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, नाम
1: जी त्रिदेव लाइट वाले हरिपुर दलाला
0: बोली। आइयो त्रिदेव लाइट वाले
1: जी जी,
0: हमारे प्रोग्राम में ज्यादा आवत हमें लागत है।
1: हाँ सर, नहीं कलियो लगा रहा।
0: कलियो लगा रहा है तो आज कहा लगा दियो।
1: अरे तो फालतू टाइम काम करा जा रहा है।
0: फालतू टाइम बाय हिया लोगन के मिलवा ना करत है फोन है का नहीं। एक साल से मिलाई से छह महीने से मिलाई से तो हर रोजे लग जात है।
1: हमार का नियम लगा रहा, सुबह लगा रहा लेकिन उठा नहीं।
0: अच्छा,
1: आज निकल लग गया।
0: तो इस समय क्या करो? तो इस समय तो फालतू टाइम बाय खाना वाना खाओ।
1: हाँ खाना वाना खा के लेते
0: हैं। लेते हो, गाना कौन सा सुन दो बताओ।
1: धर्मवीर का।
0: धर्मवीर का, चलो गाना सुनवा रहे हैं। ठीक है, नमस्कार
1: नमस्कार सर।

0: भाई देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो कोई है लाइन पर? हेलो जी नहीं। बहरहाल एक बार फिर आपको बता दें नंबर हमारा वही है 73 76 80 40 90।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग अयोध्या। फोन 9267988901।
2: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हेलो हेलो
4: हेलो
0: नमस्कार। नाम बताइए, रेडियो धीमा कर दीजिए। पहले
4: राम अवतार अग्रहरी नाम है सर।
0: अग्रहरी साहब रेडियो से दूर हो जाइए।
4: जी सर।
0: हो गए?
4: हाँ जी सर।
0: तो बताइए क्या करते हैं
4: सर? कपड़े की दुकान है।
0: कपड़े की दुकान है, कहाँ से फोन लगाया है?
4: हाँ जी सर।
0: फोन कहाँ से लगाया है आपने?
4: फोन सर अयोध्या आकाशवाणी में लगाए सर।
0: आप कहाँ रहते हैं?
4: सर टेनिस बाजार में रहते हैं सर। टेनिस बाजार बस्ती।
0: बस्ती से फोन लगाया है तो बस्ती में ही कपड़े की दुकान है
4: जी सर।
0: रेडीमेड कपड़े की दुकान?
4: रेडीमेड कपड़े की।
0: अच्छा, तो क्या क्या रखते हैं कपड़ों में? बच्चों के, बड़ों के, सबके?
4: हाँ जी सर, सबका मिल जाता है, बच्चों का, बड़ों का।
0: तो गाना आज कौन सा सुनेंगे
4: सर? नसीब फिल्म।
0: नसीब फिल्म का कौन सा गाना?
4: जो नसीब में नहीं था उनको मिला नहीं।
0: कुछ ऐसा है क्या?
4: हाँ जी सर।
0: कुछ ऐसा है जो नसीब में है जो नहीं मिला?
4: नहीं।

0: नसीब में तो सर बहुत कुछ है
1: जो नहीं मिला है। तो घर में कौन कौन है?
0: घर में पापा है, मम्मी है, भाई है, वाइफ, एक बच्चा भी है।
1: अच्छा, तो वाइफ सब लोग सुन रहे हैं आपको?
0: हाँ, फिलहाल तो सर पापा मम्मी की सुन रहे हैं, बाकी और ये लोग
1: हो। और लोग कहाँ गए?
0: भाई पढ़ाई कर रहे हैं, सिस्टर की शादी हो गई है और वाइफ अभी मायके हैं।
1: मायके हैं गर्मी की छुट्टी में, बच्चे को लेकर। बस हम समझ गए नसीब में जो है मिला नहीं, इसीलिए सुन रहे हो गुरु तुम। इतना देखो, इतना मतलब खोजने के बाद हम पता लगा पाते हैं इतनी देर से, तो हम एकदम पकड़ लेते हैं कि काहे ये हो रहा है। ठीक है, अग्रहरी साहब गाना सुनवा रहे हैं, गाना सुनिए ठीक है, और याद कीजिए किसको, हम नहीं बताएंगे।

0: सात महीने के बाद लगा है सर, रोज लगाते हैं, रोज नहीं लगता है, जाता है घंटी उठती नहीं है।
1: घंटी जाता है उठता नहीं है
0: जी सर।
1: तो देखिए आज हमने उठा लिया लेकिन आपका फोन,
0: हम बहुत निराश हो जाते हैं, नहीं उठता है।
1: अरे ऐसे कहे निराश हो जाती हैं भाई,
0: जब सर नहीं लगता है, वहीं के रहने वाले हैं, हमारे पसंद का गाना नहीं मिलता है, क्या करें।
1: अब ये कौन सी बात है कि आप वहीं के रहने वाली हैं तो आपका फोन मिल ही जाए,
0: हम तो आने ही वाले थे वहाँ पर।
1: तो काहे नहीं आई?
0: आएंगे आएंगे, अब जल्दी आएंगे।
1: जल्दी आएंगी
0: जी।
1: और सब ठीक है घर में?
0: जी सर।
1: सब बढ़िया?
0: जी सर सब बढ़िया है।
1: चलिए गाना कौन सा सुनेंगी बताइए,
0: कोई बताए तो, दोस्ती का है मोहम्मद रफी के आवाज में।
1: चलिए ठीक है, गाना सुनवा रहे हैं शारदा जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
0: ठीक सर, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, नाम बताइए।
1: शारदा देवी।
0: शारदा देवी कहाँ से फोन मिलाया है?
1: अरे हम तो लगाए हैं अयोध्या शहादतगंज से। जी सर, बेगमगंज गढ़िया रहने वाले हैं।
0: तो
1: आज 6

0: दोस्तों हेलो अयोध्या का आधा सफर लगभग पूरा हो चुका है। जी हाँ पूरा हो चुका है। तो आप किस सोच में हैं, उठाइए फोन और डायल कीजिए 73-76-80-40-90। आइए देखते हैं हमारे नए कॉलर कौन है। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए।
1: सतीश चंद, अमानीगंज गुरुद्वारा।
0: अमानीगंज गुरुद्वारा, सतीश क्या हाल चाल है?
1: सब ठीक है।
0: सब ठीक है
1: जी। जी सर।
0: क्या करते हैं?
1: ये साइकिल काम करते हैं, बच्चों की बाइक कार बनाते हैं।
0: बच्चों की साइकिल बाइक कार बनाते हैं
1: जी। जी
0: वही अमानीगंज में ही दुकान है?
1: नहीं नहीं चौक में है।
0: चौक में है
1: जी। जी
0: अच्छा, तो प्रोग्राम हमारे सुनते हैं आप सतीश
1: जी? सुनते हैं, बराबर सुनते हैं।
0: बराबर सुनते हैं।
1: प्राइस होता है?
0: हाँ जी,
1: जब प्राइस होता है, जब जब यहाँ आपके चल रहा था ट्रायल, तभी हम सुन रहे थे आपके गाना।
0: अच्छा, जब से ट्रायल चल रहा था तभी सुन रहे हैं। तो बताइए फिर आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: जानी दुश्मन।
0: जानी दुश्मन का कौन सा गाना?
1: जी तेरे हाथों में पहना के चुड़िया।
0: अच्छा चलिए सतीश गाना सुनवा रहे हैं, और कुछ कहना चाहते हैं?

0: आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़ चुके हैं लाइन पर। हेलो।
1: यस सर।
0: जी सर, नाम बताइए।
1: सर सुनील मौर्य, ग्राम हलेडी पोस्ट मछली बाजार, जिला गोंडा, मनकापुर गोंडा से बोल रहा हूँ सर।
0: जी, क्या हाल चाल है सुनील भाई?
1: बस सर बढ़िया है सर। मैं अभी सर मैं हैदराबाद से तेलंगाना से बोल रहा हूँ सर।
0: इस समय आप कहाँ, तेलंगाना में हैं?
1: हाँ सर, तेलंगाना में हूँ।
0: रहने वाले गोंडा के हैं?
1: हाँ, रहने वाले गोंडा, मनकापुर से, गांव का नाम हलेडीवा।
0: हाँ, तो बाजार। क्या कर रहे हैं तेलंगाना में?
1: सर अभी तो इधर सिविल में काम करते, सिविल कॉन्ट्रेक्टर में।
0: कब से कर रहे हैं?
1: यस सर, सर 2022 से इधर कर रहे हैं, उसके पहले तो डॉक्टर डिस में 10 साल नौकरी करे थे।
0: जी, तो आज सुनील भाई गाना कौन सा सुनेंगे?
1: सर कौन सा भी थोड़ा सा गाना सुनाना सर, और बहुत सारे लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जब हम लोग बाहर में हैं और किसी की आवाज अपने गांव या दोस्त को सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हमारे बच्चे बहुत मतलब वैसे में हम लोग भी डेली बैठ के सुनते हैं। एक बार और एक बार फोन लगा था तो मेरा छोटा बेटा बोला कि मेरा नाम नहीं बोले थे, आकाश मौर्या। तो मैं बोला ठीक है बेटा, कभी लगेगा तो लगाऊंगा, तो फिर हो जाएगा तो आज

0: लग गया सर।
1: नहीं तो ठीक है, हम भी बोल दे रहे हैं आकाश मौर्य आकाश मौर्य आकाश मौर्य, ठीक है। अब बिल्कुल बताइएगा आप अपने बच्चे को।
0: सर आपकी पसंद का कौन सा थोड़ा गाना सुनाना सर, और फिर
1: बहुत अच्छी सोच है आपकी, और थोड़े गाना सुनाएंगे हम आपको, लेकिन जो भी सुनाएंगे वो अच्छा सुनाएंगे, ठीक है। तो सुनील भाई ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गाना सुनिए।
0: हाँ
1: थोड़ा सुनवाएंगे और थोड़ा आप भी सुनेंगे, ठीक है। और सुनिए, बहुत मजा आता है एक बार, बिल्कुल। और फिर
0: से मजा आता है सर घर में बैठ के सुनने का, सब बच्चे हैं और सब लोग बैठ के सुनते हैं, ये अपने गांव का इतना मजा आता है कि पूछो मत सर।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आकाश मौर्य आकाश मौर्य आकाश मौर्य, बस।

0: हेलो अयोध्या का सफर धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर है और आइए देखते हैं कौन साथी है लाइन पर। हेलो
1: हेलो, हाँ जी सर।
0: जी सर, मैडम बताइए नाम अपना।
1: सर मेरा नाम सपना चौहान है, मैं ग्राम अरवा पूरे बाबा का पूरा पोस्ट मोती नगर जिला अयोध्या से बोल रही हूँ।
0: कैसी हैं सपना
1: जी? सर हम बहुत अच्छे हैं।
0: बहुत अच्छी हैं, क्या करती हैं
1: जी? सर अभी तो मैं पढ़ाई करती हूँ।
0: पढ़ाई करती हैं
1: जी।
0: कौन सी क्लास में हैं?
1: अभी तो हमारा पीजी हो रहा है।
0: पीजी हो रहा है?
1: डबल पीजी
0: हूँ। डबल पीजी हो रहा है? अब इसके आगे तो हम कुछ पूछबे नहीं करेंगे सपना। तो और बताइए,
1: और सब बढ़िया है सर?
0: घर के काम भी करती हैं
1: जी? सर थोड़ा थोड़ा।
0: थोड़ा थोड़ा मतलब?
1: ज्यादा कामों में मन नहीं लगता।
0: ज्यादा काम में मतलब कमरे में अगर आधी झाड़ू लगाती है खाली, बस थोड़ा सा आधा खाना बनाती है?
1: नहीं, ज्यादा काम करने का मन नहीं।
0: ज्यादा काम करने का मन नहीं करता? ऐसा क्यों सपना
1: जी?
0: ऐसा क्यों, काम करने का मन क्यों नहीं करता? हेलो
1: जी। ज्यादा हमें खाना खाने का मन करता है, ज्यादा सोने का मन करता है।
0: अरे वाह, एकदम हमारी तुम्हारी एकदम मिलता है, एकदम हमको भी सेम यही है। खाना खाने का मन करता है, सोने का मन करता है
1: जी।
0: बिल्कुल यही होना चाहिए ना
1: जी। और कोई हमें ना डिस्टर्ब करे, हम
0: बहुत सही। हाँ, और हाथ में मोबाइल हो?
1: हाँ,
0: हाथ में मोबाइल हो, नेट पूरा भरा हुआ हो, खाने को मिले, सोने को मिले, है कि नहीं
1: जी?
0: क्या जिंदगी है। तो सपना गाना बताओ। अच्छा,
1: जिंदगी की तलाश में हम साथी ने भी कहा सर। अगर वो नहीं है तो चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: नहीं, हम तो यही वाला सुनवाएंगे सपना, यही वाला
1: जी सर। कोई दोनों में से कोई भी।
0: हम यही जिंदगी की तलाश में सुनवा रहे हैं। तो इस समय खा रही हैं, क्या कर रही हैं?
1: खाना खा रहे हैं सर।
0: अभी खाना खा रही हैं ना, हमको लग गया। बिल्कुल, चलिए खाना खाइए, सोइए और गाना एंजॉय कीजिए।
1: जी सर।

0: आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन है। हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए।
1: अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रमना, देवकाली रोड, अयोध्या।
0: एकदम याद हो गया है हमको
1: जी सर।
0: क्या हाल चाल है अर्जुन भाई?
1: हाल चाल सर बहुत बढ़िया है, आजकल गर्मी बहुत तेज है।
0: नहीं आज तो कुछ राहत है हमें लग रहा है
1: जी,
0: आज तो कुछ राहत है गर्मी से।
1: हाँ सर आज तो राहत है, आज बहुत राहत है। आज बहुत राहत है सर।
0: तो कहाँ है इस समय आप?
1: अरे खाना वाना खा के सर लेटे हुए हैं, बस आपका प्रोग्राम सुन रहे थे। हमने कहा लाइए मिलाए आपसे, दर्शन हो जाए।
0: दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, आवाज आप जरूर सुन लेंगे हमारे।
1: हो जाएगी किसी दिन
0: मुलाकात
1: होगी,
0: बिल्कुल होगी अर्जुन
1: सर।
0: तो गाना कौन सा?
1: दिल्ली भर रखवाला सर, मेरे दिल्ली मांगा जो मिल गया।
0: चलिए गाना सुनवा दे रहे हैं और धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: जी जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।

0: दोस्तों हेलो, योद्धा का सफर अपने अंतिम पड़ाव पर है। आइए देखते हैं शायद एक कॉल हमारा अटेंड कर पाए। हेलो
1: हेलो
0: जी, जल्दी से नाम बताइए अपना।
1: ममता।
0: ममता कहाँ से?
1: अयोध्या से।
0: गाना कौन सा सुनेंगी?
1: सुना
0: जी
1: सुना दिया।
0: ये कौन सी पिक्चर है?
1: पिक्चर नहीं है, गाना है।
0: कौन सी फिल्म का गाना है ये?
1: तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं।

हम तुम्हारे हैं सनम। चलिए ममता गाना सुनवा रहे हैं, समय हमारे पास नहीं है, किसी दिन और। ठीक है ममता गाना सुनवा रहे हैं, कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।

दोस्तों प्रोग्राम हेलो अयोध्या को आप तक सफल रूप से पहुंचाने में कंट्रोल रूम से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे स्वप्निल मिश्रा और राजकुमार मौर्य। उड़े हवाओं में शहरे जमीन नहीं पहुंचे, जहां पहुंचना था हमको वहीं नहीं पहुंचे। जाने किसकी उम्र लग गई थी पैरों को, जाने किसकी उम्र लग गई थी पैरों को, तमाम उम्र चले और कहीं नहीं पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ सजीव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या से दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को। आप बने रहिए आकाशवाणी अयोध्या के साथ रात 11:10 तक।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई, जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को संपन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।